RM2. Radio Musty feels a musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
3: A very good morning आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 24 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
2: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। संडे की प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। वीकेंड का आखिरी दिन और समय है दिल को सुकून देने वाले सदाबहार गानों का। 5:04 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। है वेल, आज की सुबह की खूबसूरत शुरुआत हुई है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। तुम्हें जीवन की डोर से बांध लिया है, क्या ही प्यारा गाना है ना। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार दिल को ये गाना छू ही जाता है। संडे मॉर्निंग्स में का अलग ही नरमी होती है, ये तो हम हमेशा कहते हैं। ना शोर ना भाग दौड़, बस हल्की सी हवा, चाय की खुशबू और यादों से भरे गीत। और आज के इस चिलैक्स सफर में हम लेकर आए हैं वही गाने जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। तो इस सुकून भरी सुबह का मजा आप लीजिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया और म्यूजिक का एक खूबसूरत सफर अभी जारी है ओनली ऑन रेडियो मस्ती। नॉट टू फॉरगेट, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप जरूर भेज सकते हैं 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: पुराने गाने और संडे सुबह का रिश्ता बहुत ही खास होता है, जैसे चाय और बारिश बिल्कुल परफेक्ट है। इन गानों में एक सादगी होती है, सीधे दिल से निकली आवाज, दिल से निकले अल्फाज, ये दोनों और रूह को छू लेने वाली सुर, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। कभी कभी एक पुराना गाना पूरा जमाना याद दिला देता है, वो लोग, वो लम्हे और वो बातें जो समय के साथ भी पुरानी नहीं होती है कभी। आज का चिलैक्स हम उन्हीं यादों के नाम डेडिकेट करते हैं, सो स्टे विद द रेडियो मस्ती, क्योंकि हम लेकर ही आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम। एंड ये जो स्पेशल सेगमेंट है, यानी कि 5 बजे से 6 बजे तक, यहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, जहाँ पर आप उन सभी यादों को ताज़ा कर पाते हैं। जी हाँ, डाउन द मेमोरी लेन आपको ले चलते हैं, तो आप शो की किसी न किसी की याद आ जाती है या किसी लम्हे की याद आ जाती है, तो लम्हों को रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हम पास्ट में नहीं जाते, लेकिन पास्ट की एक झलक देख लेते हैं और इसी में दिल खुश हो जाता है, क्योंकि पास्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट बैड थिंग्स। सब कुछ बुरा बुरा नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। सो क्यों ना उन बुरी चीज़ों को त्याग दे और उन अच्छी चीज़ों को याद रखे, ताकि मन भी स्पष्ट हो, बहुत ही क्लियर रहे एंड आप भी ठीक ठाक रहे। मन आपका खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ ही रहेंगे। कहते हैं ना, अगर आपको फिजिकल स्फूर्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका ये मस्तिष्क, आपका ये मन, योर मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही ठीक होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, तब भी तो आप ठीक से जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट पीस, अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेंटल हैप्पीनेस के बारे में भी सोचिए, ना कि ओनली द निगेटिविटीज़ ये सब, बट पॉजिटिव थॉट्स साथ में रखें। और हमारे साथ रिलैक्स शो आप एंजॉय करते रहिए, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल गाने हमारे सभी लिसनर्स के नाम। एंड लेट मी टेल यू दैट थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, क्योंकि हमें पता है आप बहुत ही प्यार के साथ है ये सारे मैसेजेस भेजते हैं, तो हमारे भी तो दायित्व तो होता है ना कि आपके मैसेजेस आपके अपनों तक पहुँचा दें। सो विल बी बैक विद दैट थोड़ी ही देर में।

0: Chillax with Radio Musty.
1: दीवाने तो हम सभी हैं इन खूबसूरत गानों के और समय हो चुका है अभी आपके मैसेजेस की ओर बढ़ने का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने सारे मैसेजेस हैं। पहली व्हाट्सएप की ओर हम बढ़ते हैं और एक मैसेज यहाँ पर धनेश्वर जी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग आपको और आपकी प्यारी पत्नी सुनीता है संजीव निशा देव रेखा पूरे दाविदोस परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक सभी को विश करते हैं टू हैव अ ग्रेट संडे। आपको भी हैप्पी संडे। एंड यहाँ पर शीला लिस्ट पे हौसल के विषय से है अपने पूरे परिवार के नाम एक गाना रिक्वेस्ट कर रही है। हैप्पी संडे विश करती है सबको। हैप्पी संडे आपको भी। आपका रविवार बहुत ही अच्छे से जाए बस हम यही विश करते हैं। एंड अब्दुल और सारा बानो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग आपको। हैप्पी संडे आपको।

0: भी एंड सभी को विश करती है। वैसे संडेज बहुत ही हैप्पी होते ही है, अगर आप चाहते हैं कि ये हैप्पी हो तो ये हैप्पी ही रहेगा, बस हमें ये मैनिफेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं कौन, विदुषा कुसौ सिंह। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको विदुषा, आप है सेवास्टोपोल से और विश करते हैं सभी को हैप्पी संडे ऑलरेडी। आप क्योंकि आपके जो हस्बैंड हैं विमल ऑलरेडी काम के लिए निकल चुके हैं और मोटा एम्प्लॉयर से काम करते हैं, सभी को विश करते हैं टू हैव अ गुड डे। और एक प्यारा सा गाना अपने हबी के नाम विमल के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, वॉन्ट टू टेल हिम दैट यू लव हिम सो सो मच, दैट सो स्वीट। सवेरे सवेरे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। एंड यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट की है, शायद मेरी शादी का ख्याल इसलिए मम्मी ने, हमें पता है ये गाना, तो हम कोशिश करेंगे और टाइम रहे तो हम ज़रूर चलाएंगे आपका ये गाना, क्योंकि आपके हबी को बहुत ही पसंद है ये गाना। एंड हमारे साथ है किशन जी जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात आपको किशन जी, आई होप आप ठीक हैं। एंड संडे बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है आपकी, एंड आप सब आप हमारे बारे में ही सोचें कि कब हम ऑन एयर आएंगे और आ ही गए। सो स्टे ट्यून टू रेडियो मस्ती और आप सुनते रहिए रिलैक्स शो, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये सदाबहार गाने बहुत ही पसंद है। हैव अ ग्रेट डे किशन जी। और यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ कौन है, यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस, क्या होता है कि नॉर्मल मैसेजेस में कभी कभी आपके जो मैसेजेस है पूरे नहीं आते हैं, कट जाते हैं, तो इसलिए हम आपको कहते रहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। बट आई नो कि कई लोग व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, बट अगर हो सके तो छोटे मैसेजेस आप अगर भेजेंगे तो ये आई थिंक पूरा आ जाएगा, बट अगर आप लंबे मैसेजेस भेजेंगे तो ये पूरा नहीं आएगा। सो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस किस के मैसेजेस यहाँ पर पढ़ पाएँ। ज्योति जी शब्द बनागर से है, नेक्स्ट गाना आशनी रेखा सुरेखा और माधव परिवार के नाम हमारे लिए भी एज वेल, थैंक यू सो मच ज्योति जी। एंड वंदना सिसिया का जो जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आपको वंदना, बहुत सारा प्यार है, गुड विशेज फ्रॉम सुंदरम आरासी के लईवानी राजेंद्र नितिन विश्मा एंड रेडियो मस्ती की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। संजोग की ओर से एक स्पेशल ट्रैक जाता है एनवी के नाम, जो हम जरूर चलाएंगे थोड़ी देर में, एंजॉय दिस वन।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अपनी घड़ी में लाते चलिए, 6:45 बज रहे हैं और समय हो चुका है आपको बताने क्या कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह और नए विचार लेकर आएगा। काफी समय से जो बात मन में थी उसका हल आपको मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण ना पर रखे, शाम तक सुकून महसूस होगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज घर का माहौल शांत और खुशनुमा रहेगा। दिल की बात कहने का सही समय है। आर्थिक मामले में संभाल कर चलना लाभदायक होगा। पुरानी यादें मन को छू सकती है और आज थोड़ा आराम जरूर करें। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज बातचीत और मुलाकातों से खुशी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। छोटी सी यात्रा का योग बन रहा है। मुस्कान बनाए रखिए। लकी नंबर है आज आपका 10।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाएं गहरी रहेंगी। परिवार और अपनों का साथ हिम्मत देगा। किसी बात को लेकर अधिक चिंता न करें। प्रार्थना और शांत संगीत मन को सुकून देगा। शाम सुंदर रहने वाली है। लकी नंबर है आज आपका 12।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास बना रहेगा। आपकी बातों का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी नए काम का विचार मन में आ सकता है। बाहर की हल्की सैर ताजगी देगी। दिन आनंद से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज योजना और व्यवस्था पर ध्यान रहेगा। घर के छोटे काम पूरे होंगे। मन शांत और स्थिर रहेगा। जल्दबाजी से बचना जरूरी है और अपनी सेहत का ध्यान रखें। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। किसी अपने के साथ दिल से बात होगी। संगीत और कला की तरफ मन आकर्षित रहेगा। तनाव कम होगा और मन हल्का लगेगा। दिन सुकून भरा

0: रहेगा और अल्लाह के नंबर है आज आपका क्या रहा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज जंतर की आवाज सही रास्ता दिखाएगी, किसी पुरानी उलझन का समाधान मिल सकता है, गुस्से और जिद से दूर रहना बेहतर होगा, ध्यान और प्रार्थना से शांति मिलेगी, शाम तक अच्छा आप महसूस कर पाएंगे एंड आपका लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन उमंग और खुशी से भरा रहेगा, दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक का माहौल बनेगा, नए इरादे मन में जग सकते हैं, छोटी सी सैर या यात्रा का योग है, दिन यादगार रहेगा, लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज जिम्मेदारियों के साथ आराम भी जरूरी रहेगा, आर्थिक मामले में समझदारी लाभ देगी, घर के बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद मिलेगा आपको, मन में स्थिरता बनी रहेगी, शाम सुखद होगी, लकी नंबर है आज आपका 2।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार और प्रेरणा मिलेगी, किसी रोचक बातचीत से मन खुश हो सकता है, सामाजिक संबंध और भी मजबूत होंगे, किसी की मदद करने का अवसर आपको मिल सकता है, दिन हल्का और प्रसन्न रहेगा, लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है, प्रार्थना और शांत माहौल से सुकून आपको मिलेगा, अपनों के साथ समय बिताने का मन करेगा, किसी की प्यारी बात दिल को छू सकती है, शाम तक संतोष महसूस होगा, लकी नंबर है आज आपका 5। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि, आपके नाम, आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे, संडे का दिन है इससे तो अच्छा कटना ही है, बहुत ही अच्छा बीतेगा ये, तो चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: RM2 Radio Musti.

साथ में जुड़ी है प्रियक्षा और पापा संजीव मामा रेशमा कैथोबोन से जुड़े हुए हैं सभी। आपके नाम ये गाना जाता है, वैसे आप पन्ना की तमन्ना गाना सुनना चाहते हैं, हम दूसरी बार चलाएंगे ये गाना। सो एंजॉय दिस वन किशोर दा और आशा जी की आवाज़ में।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: A very good morning, aap sabhi ko suprabhat. Ghar mein aate chaliye subah ke theek 6 baj rahe hain. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको करुणा जी।
6: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। बोभा सरोजिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑंड्रे टुसें बने हैं। उन्होंने गैब्रिएला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बने रहेंगी। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले 2 वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशस नागरिकों की भर्ती की जाएगी। और विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है।

देश में ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू रहेगी। मस्कारिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और दिन के दौरान हल्की बारिश होगी, खासकर ऊंचाइयों और दक्षिण में। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, खासकर रात के दौरान। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर

0: मीटर तक हो सकती हैं। उच्च ज्वार के समय लहरें जो हैं पश्चिम एवं दक्षिणी इलाके में तटों से भी टकरा सकती हैं, इसलिए मछेरों, मनोरंजन नौकाओं तथा आम जनता से अपील की जाती है, ज़ोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाएं। आज के लिए सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Chillax, chillax, chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को. सुप्रभात. 6:10 हो रखे हैं और संडे की ये प्यारी सुबह अब और भी रोमांटिक हो चुकी है चिलैक्स के साथ सिर्फ रेडियो मस्ती पर. सेकंड आवर की खूबसूरत शुरुआत हुई है इस खूबसूरत गाने के साथ है जो हमने अभी अभी चलाया. एक ऐसा गाना जो आज भी सुनते हैं तो दिल को हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर ही देता है. संडे मॉर्निंग्स और रोमांटिक मेलोडीज, क्या ही परफेक्ट जोड़ी है. हल्की सी ठंडी हवा, सुकून भरा माहौल और प्यार भरे गाने जो यादों को फिर से जिंदा कर देते हैं. अगर आप भी चाय के साथ इस सुबह को एंजॉय कर रहे हैं या आप काम के लिए निकल चुके हैं, संडेज के दिन भी काम करते हैं लोग, उनको वो कोआज, तो बस हम आपको यही कहेंगे कि आप इस म्यूजिकल सफ़र का मज़ा लीजिए. आज के इस सफर में होंगे दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गाने, थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी यादें और बहुत सारा सुकून. दिस इज मी आपके रिया आपके साथ और आप सुन रहे हैं चिलैक्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती.
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: सच में एक ही दिल है और ये एक दिल कितनी बार हम इन सभी गानों

0: के नाम देते रहेंगे. बट ब्यूटीफुल गाने, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं यहाँ पर ऑन रेडियो मस्ती. रिलैक्स शो चल रहा है तो ऐसे कैसे खूबसूरत गाने नहीं चलाएंगे आपके नाम. 6:23 एंड आप सुन रहे हैं रियल को ऑन रिलैक्स. सो यस, यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्या भेजा है आपने. देवानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नमस्ते आपको, गुड मॉर्निंग. बबीता, दर्शनी, कृष्टि, नकुल एंड रिया के नाम आप गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. कहते हैं कि वहाँ पर यानी कि भोविदास में बहुत ही ठंड है. वेल, वहाँ पर ठंड हमेशा ही होता है. सो आपसे हम कहेंगे कि टू टेक केयर एंड गर्म कपड़े पहनते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए. एंड अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ये गाने आपको वॉर्म वॉर्म रखेंगे. हैव अ ग्रेट संडे. और हमारे साथ जाना जी जुड़ी हुई है फ्लैक्स से. आज आपके भाई विष्णु का जन्मदिन है. सो हैप्पी बर्थडे टू विष्णु. बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेज ऑन योर बर्थडे. और ज़रूर एक गाना आपके नाम हम चलाएंगे. बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम रीमा शिष्टा जी, नीता, अंशिनी, सेल्फिया, यूवी, कृषि एंड द होल शिव सरन परिवार जो है फ्लैक्स से. हमारे साथ और जुड़ी हुई है प्रिया सिदाम. आप है पुत्र दो विलेज से और डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना अपनी तीन बेटियों के नाम आयुषी, अक्षिता और अक्षिनी. सो तीनों बेटियों के नाम नेक्स्ट गाना चलाते हैं. और डार्विन स्वीटर रवीश, प्रीशा, लोविशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अपारी परिवार तो रोशनों से आप साथ निभा रहे हैं. रोशनों से जितने भी लोग साथ निभा रहे हैं, हैप्पी संडे सभी को. नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है. और थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड हमारे साथ और हमेशा हम पर इतना प्यार न्योछावर करने के लिए. आई जस्ट विश कि आपका ये रविवार बहुत ही अच्छा जाए और आपने जो कुछ भी सोच रखा है आप सब कुछ पूरा कर पाए. और अगर पूरा नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, आपने कोशिश की यही सबसे बड़ी बात है. स्टे हैप्पी, स्टे रिलैक्स्ड. हमारे साथ आप रिलैक्स शो एंजॉय करते रहिए. द नेक्स्ट ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम.
1: रिलैक्स विद रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन.

0: सभी को नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बोबासा रोजहिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑंड्रे टुसें, उन्होंने गैब्रियल बाटू की जगह ली। गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए, इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का भी प्रस्ताव। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। श्रम मंत्रालय कनाडा में मौर्य नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा, खासकर फ्रांकोफोनी मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले दो वर्षों में 50 द्विभाषी मौर्य नागरिकों की भर्ती। और विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया। और अब समाचार विस्तार से। बोबासा रोजहिल को नया मेयर मिल गया है। एमएमएम के लुई ऑंड्रे टुसें को शनिवार दोपहर नगर परिषद की विशेष बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गैब्रियला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बनी रहेंगी। सिते बॉकली के निवासी लुई ऑंड्रे टुसें इससे पहले 2012 में भी मेयर रह चुकी हैं। आस्था गोविंद।
1: कई वर्षों बाद नगरपालिका राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा फिर से बोबासा रोजहिल की कमान संभाल रहा है। लुई टुसें ऑंड्रे एक दशक से अधिक समय बाद दोबारा मेयर बनी हैं। सिते बॉकली से आने वाले लुई टुसें ऑंड्रे खुद को जमीनी नेता मानते हैं और उनका कहना है कि वे लोगों की बात सुनने, सादगी बनाए रखने और काम पर ध्यान देने को प्राथमिकता देंगी। तीन बच्चों के पिता और चार पोते पोतियों के दादा लुई टुसें ऑंड्रे लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। वे कई वर्षों से एमएमएम के सक्रिय सदस्य हैं और 1996 से अब तक 5 बार नगरपालिका काउंसिलर चुने जा चुकी हैं।
2: Je ne vais pas parler de trop de grands projets, Valérie Dizot, mais il y a beaucoup de travail à faire. Si tout le monde que vous êtes allé là dans le discours, il y a des problèmes de chikungunya, beaucoup de problèmes. Et nous vous avez bien sûr l'aide de nos citadins, nous vous avez l'aide de nos habitants de la ville pour pouvoir améliorer la situation.
1: बॉकली इलाके में उनकी पहचान लोगों के करीब रहने वाले नेता के रूप में रही है। अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर लुई टुसें ऑंड्रे का कहना है कि वे बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते, बल्कि व्यवहारिक और जरूरी कामों पर ध्यान देंगी। उनकी प्राथमिकताओं में सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाना, सांस्कृतिक गतिविधियों को फिर से सक्रिय करना और नगर पालिका की हॉटलाइन सेवा को अधिक प्रभावी बनाना शामिल है।
0: तो आपको बताते चले कि सोमवार को काठरबोन में दिन के 1 बजे, पोर्टविस में शाम 5 बजे, वाकवा फिनिक्स में शाम 5 बजे और क्यूपी में 5:30 बजे चुनाव होंगे, नगर पालिका चुनाव। गंगा तालाब और कौटोगल की घटनाओं पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बकोरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया से मुलाकात की। इस बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। कविराज बकोरी के अनुसार इस व्यवस्था को किसी संस्था के सहयोग से संचालित किया जा सकता है, ताकि स्थल का बेहतर प्रबंधन और संरक्षण हो सके। निर्मा नारायण रेड्डी ने उनसे बात की। विवरण आस्था गोबिंद का है।
1: हमने मंत्री महेंद्र गुंडिया के साथ मिलकर छोटे और लंबे अरसे वाली मांगों पर बात की है। प्रवेश पर एसएमएफ की मौजूदगी, ज्यादा निगरानी के लिए, गंगा तालाब की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर दिया गया। हमने ये भी मांग की कि पर्यटकों के लिए गंगा तालाब के प्रवेश पर शुल्क लगाया जाए। इसका संचालन एक संगठन द्वारा किया जाएगा।
0: शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वक्ताओं ने शांति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील की। कविराज बकोरी ने सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से विभाजन और उकसावे से बचने की अपील की और कहा कि मॉरिशस की एकता और साथ मिलकर रहने की भावना को मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से उनको सुनते हैं विवरण आस्था गोबिंद का।
1: गंगा तालाब की पवित्रता, वहाँ का शांत वातावरण और हमारी बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश में आपसी सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाल की घटना और उससे उठे विवाद के बाद हम यही कहना चाहते हैं कि गंगा तालाब एक पूजा स्थल है, एक आस्था का स्थान है। ये स्थल नेशनल हेरिटेज फंड के अंतर्गत आता है और कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। हर सोमवार को हमारी युवा टीम वहां पर जाती है पूजा आराधना के लिए और हमारी यही अपील है कि जो भी पर्यटक या आगंतुक गंगा तालाब आए वे इस पवित्र स्थल और वहां की धार्मिक भावना का सम्मान करें।
0: मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया। संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। हालांकि 16 सितंबर की तारीख पहले ही सरकार की 2026 की आधिकारिक छुट्टियों की सूची में शामिल की जा चुकी थी, इसलिए अब आधिकारिक संशोधन किया जाएगा। मॉरिशस मराठी महामंडल के मुख्य पुरोहित शांताराम राजू को सुनते हैं।
3: मॉरिशस मराठी महामंडली के अध्यक्ष, पुरोहितों और सब मंदिरों के प्रतिनिधि के बैठक लगाने के बाद और हमारी मराठी पंचांग परामर्श करने के बाद मॉरिशस मराठी महामंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी का विसर्जन दिन यानी सार्वजनिक छुट्टी यानी पब्लिक हॉलीडे बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को होना चाहिए, क्योंकि हम विसर्जन पंचमी तिथि में करते हैं और पंचमी तिथि मंगलवार ही को सुबह 6:15 पर शुरू हो रहा है। गणेश पूजा तिथि यानी चतुर्थी तिथि सोमवार 14 सितंबर को सुबह 5:36 पर शुरू हो रहा है यानी 7:33 और मंगलवार सुबह 15 सितंबर को 6:14 पर समाप्त हो रहा है और पूजा गणेश पूजा तिथि में करना चाहिए।
0: रिफोम पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी श्रमिकों की स्थिति जैसे

0: से मुद्दों पर चर्चा की गई। पॉटी के महासचिव रियाद सुबराती ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की, जो उनके अनुसार कई मॉरिशियन परिवारों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी कामगारों के बेहतर नियमन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने, विवरण आस्था गुमिन का।
1: होलसेल में 17 रुपए किलो में मिलने वाला वही सामान सुपरमार्केट में 240 रुपए में बिक रहा है। लोग अब कानून और अधिकारियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। पुलिस का भी डर कम होता जा रहा है। इसी वजह से रोड रेज जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आपकी गलती ना भी हो तब भी आपको मारपीट का सामना करना पड़ सकता है। लोगों में सहनशीलता कम होती जा रही है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे युवा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कई युवा काम नहीं करना चाहती। बहुत से युवा विदेश चले जा रहे हैं और बहुत सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि मॉरिशस में आखिर कितने युवा नशे की गिरफ्त में हैं।
0: श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशियन नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले 2 वर्षों में 50 द्विभाषी मॉरिशियन नागरिकों की भर्ती की जाएगी। निर्माण, शिक्षा, होटल, उद्योग प्रमुख क्षेत्र होंगे। इस निर्णय को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य कनाडा में फ्रेंच भाषी प्रवासन को मजबूत करना है। श्रम मंत्री रेजा उत्तिम के अनुसार ये पहल मॉरिशियन नागरिकों को फर्जी नौकरियों से बचाने में मदद करेगी। उनसे बात की राजमिला सीतामुनि ने, विवरण आस्था गोबिन का।
1: कनाडा के साथ एक साझेदारी कायम की गई है। शुरुआती स्तर पर मैनुअल वर्कर्स की भर्ती की जाएगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि कामों के लिए मंत्रालय के जरिए ये भर्ती की जाएगी। ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि कनाडा में इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिले और वहां उनके क्वालिफिकेशन को पहचाना जाए। ये नौकरी मिलने का एक सुरक्षित तरीका है।
0: सर्दी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन ठंड के साथ साथ श्वसन संक्रमण के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 11 से 17 मई के बीच 4,174 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पहले वाले सप्ताह में ये संख्या लगभग 3,750 थी। डॉक्टर फाजिल कोडाबोकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के प्रकार के कारण आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फ्लू होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं होगा, क्योंकि इस समय कई प्रकार के वायरस फैल रहे हैं। उनसे बात की जेनी येलापा ने, विवरण रजनी बिकर का।
2: डॉक्टर फासिल कोडाबकस ने कहा, सर्दी जुकाम के कई वायरस हैं, H1N1, H3N2। अगर किसी व्यक्ति ने एक वायरस से बचाव कर लिया है, टीका लगवाया है, संभवतः एक अन्य वायरस से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं। जब सर्दी हो जाती है तो टीका नहीं लगवाया जा सकता। एक दो सप्ताह बाद जब स्वस्थ हो जाए तब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जब उसके डॉक्टर ने कहा कि वो टीका लगवा सकता है तब ऐसा कर सकता है। इससे व्यक्ति अन्य वायरस से सुरक्षित रहेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि चिकनगुनिया के मामले भी फैल रहे हैं। अतः अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया है, सर्दी है, तो अच्छा नहीं है। इन दोनों बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं, परेशानियां भी हो सकती हैं। अतः सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए, तो इससे हमें मदद मिलेगी।
0: तो विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लू और मौसमी संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। हालांकि टीका बीमारी होने से पहले लगवाना चाहिए, न कि लक्षण आने के बाद। इसके साथ ही अच्छी जीवन शैली, पर्याप्त नींद, नियमित पानी पीना और संतुलित आहार भी सर्दियों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्दी में स्वस्थ रहने के लिए उचित खान पान आवश्यक है। विटामिन सी का सेवन करना

0: चाहिए, जैसा कि न्यूट्रिशनिस्ट वंदना गजाधर हमें बता रही हैं, विवरण रजनी बिकर का।
1: Quand nous mangeons bien équilibré et varié avec beaucoup de fruits et de légumes de différentes couleurs avec
2: nutritionist Vandana Gajada ne kaha jab hum theek se khate hain santulit bhojan karte hain alag alag rang ke phal evam sabziyan khate hain to protein se bharpur khadya padarthon ka bhi sevan karte hain to in sab se hame vitamin c zinc aadi prapt hota hai hamari pratirodhak kshamta mazboot hoti hai isse bhari sankhya mein aur achhi kism ke immune cells कायम होते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि नींद बहुत जरूरी है, इससे हम आराम करते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलता है, सेल्स भी फिर से मजबूत होते हैं, इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद मिलती है। इसके अलावा व्यायाम से भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतः संतुलित भोजन करना, अच्छी तरह से सोना और व्यायाम करना आवश्यक है।
0: विदेशी स्तर पर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रणनीति काफ़ी हद तक वैसी दिख रही है जिसे अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनाया था। हालांकि जानकार मानते हैं कि क्यूबा का मामला वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा जटिल, जोखिम भरा और महंगा साबित हो सकता है। और लगभग 3 महीने से जारी संघर्ष को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने पर भी सहमत नज़र आ रहे हैं। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उम्मीद जताई कि आज नहीं तो कल ईरान समझौता स्वीकार कर लेगा। रूबियो ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और अच्छी खबर मिलने की जल्दी उम्मीद है। मौसम की रिपोर्ट। देश में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज़ और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान भी और हल्की बारिश हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों एवं दक्षिण में। रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं और उच्च ज्वार के समय पश्चिमी एवं दक्षिणी निचले तटों पर भी लहरें टकरा सकती हैं। इसलिए मच्छरों, मनोरंजन नौकाओं और आम जनता से ज़ोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाएं। आज सूर्योदय हुआ 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। बोबासैं रोजिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑरे टूसें बने, उन्होंने गैब्रिएला बाटू की जगह ली। गंगा तलाव में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए, इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल। गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी।

श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिकों के रोजगार को बढ़ावा दे रहा, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए। विदेश में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया। 6:48 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है कार्यर के सहयोग से। जुड़े रहे हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रोटोरुआ लाफ्लोरा में 66 साल के 66-year-old श्री देवानंद जोकुआ जो सुनील से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान रोटोरुआ लाफ्लोरा से उठाकर दाह संस्कार के लिए मारिजानी रोजबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड पालमाओ में 62 साल के 62-year-old श्री गीनानाथ बोजुनोत जो जिनात भगत से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती रागिनी बोजुनोत के मकान रॉयल रोड पालमाओ से उठाकर दाह संस्कार के लिए मौलाशो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मेजोनेट रोड रिविया डिजांगी में 80 साल के 80-year-old श्री सुबाया जुगनादन जो रामदास से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके बेटे जेसन जुगनादन के मकान मेजोनेट रोड रिविया डिजांगी से उठाकर दाह संस्कार के लिए तायाक की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रामडू रोड बुनाकय में 92 साल के 92-year-old श्री दोदिल मुनि शंकर जो रामानंद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे बेबे शंकर के मकान रामडू रोड बुनाकय से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुनाकय की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। केवल नगर बेलगीव में 57 साल के 57-year-old श्री धर्मराज भगीरथी जो आडू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान केवल नगर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। एरोस्लेन प्लेंडे पपाई में 47 साल के 47-year-old श्री सुरेंद्र भिकारी जो अजय से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 इनके मकान एरोस्लेन प्लेंडे पपाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेंडे पपाई की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 25 ओकिले स्ट्रीट बोवालो में बर्ग में 81 साल के 81-year-old श्री फाजले हक जगेसर जो फाजलिन से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इसे फिर से सुन लीजिए। नंबर 25 ओकिडे स्ट्रीट बोवालो में बर्ग में 81 साल की 81-year-old जनाब फाजले हक जागेसर जो फाजलिन से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 बजे इनकी बेटी नूरबी उगबाली के मकान नंबर 25 ओकिडे स्ट्रीट बोवालो में बर्ग से निकालकर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिवियर डी क्रियोल का कब्रिस्तान जा जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गेंट्स हिल।

फोर्ड इंग्लैंड में 57 साल की 57 ईयर ओल्ड श्री राजीव कुमार गोकुल, श्री राजीव कुमार गोकुल जो राजीव से जाने जाते थे और पहले HSBC के मैनेजर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं बुधवार 27 मई को सपहर 3:30 बजे इनके मकान नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गंस हिल इलफोर्ड से उठाकर दाह संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन ऑन वेंसडे एट 3:30 PM। मोहल रोड रिविया जोहापा में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड श्रीमती सुजावंती लोबिन, श्रीमती सुजावंती लोबिन पैदाइश नाम जगू जो सुजिया से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान मोहल रोड रिविया जोहापा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाएगी। अतिरिक्त सूचना जो है समय बल्कि स्मशान भूमि बाद में सूचित किया जाएगा। शिवाला रोड मोगू में 74 साल की 74 ईयर ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी बेचू, श्रीमती लक्ष्मी बाचू, श्रीमती लक्ष्मी बाचू पैदाश नाम रामलगन जो इंद्रानी से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:00 बजे इनके बेटे धीरज बाचू के मकान शिवाला रोड मोगू से पॉम्पलेमुस से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोगू पॉम्पलेमुस की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3:00 PM। और हनुमान रोड रिश्मा में 88 साल की 81 ईयर ओल्ड श्रीमती सावित्री दुमन, श्रीमती सावित्री दुमन जो सावित्री से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 3:00 बजे इनके मकान हनुमान रोड रिश्मा से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3:00 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

वेल, देखते देखते ये समय भी कट गया और अभी तो जाने का समय भी हो चला है, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज है यहाँ पर जो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। फादर्स डे इज कमिंग और आप अपने पापा को बहुत ही मिस कर रहे हैं। एक साल हो गए हैं चले गए हैं, इट्स सो पेनफुल, बट स्टिल पापा के लिए प्यार ही प्यार। शर्मिला है कैथ बोन से और आपने भेजा है ये मैसेज, बट ऑल्सो मम्मा से बहुत प्यार है। मम्मा का नाम जानती हैं एंड शी इज द बेस्ट मम्मा इन द होल वर्ल्ड। आई ऑल्सो विश कि आप हमेशा खुश रहे और मम्मा का साथ आपको हमेशा मिले। चलिए इसी के साथ हमारे जाने का समय हो चला है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज और हैप्पी संडे सभी को।

0: Podcast Tarka.
1: RM2 Radio Mesti.
2: सुप्रभात अंग्रेजी, अगर आप भी आप ले रहे हैं, आई फील यू। 7:05 हुए हैं, सुबह से रिया साथ दे रही थी, अब निर्मनी होगी 9 तक आपकी ही टाइमलेस तड़का में। तो साथ में वाइब करते हैं संडे को किक स्टार्ट करने के लिए।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Express Tadka.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: अगर आपकी आंखों में नींदें अभी भी हैं लेकिन सपने बहुत सारे हैं, कभी कभी बस एक झटके की जरूरत होती है उस गाड़ी को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास वो मिसिंग इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई नहीं जी, आर एम टू रेडियो मस्ती यही पर है। आप बस साथ देते रहिए, मॉर्निंग को एंजॉय करते हैं साथ में।
0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती।
4: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La boîte de butter cookies d'Ancita à 129,95 € et le set de vaisselle à dîner de 24 pièces à 999,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papas, merci.
5: On est tous winners!
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News,
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी सुनते हैं latest updates आपसे विकास जी. Good morning.
5: Good morning Nilmani and a very good morning to all sports fans. बड़ा अच्छा गाना भी आ रहा था. हम साथ साथ हैं तो सफर कट ही जाएगा. राहों में और राहों में अभी राह में बहुत कुछ अभी सामने है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में. वर्ल्ड कप 2026 के आरंभ होने से 18 दिन पूर्व आखिरी डिटेल्स फाइनलाइज किए जा रहे हैं. इस कारण आज यूरोप भर में विभिन्न चैंपियनशिप के आखिरी मैच आखिरी सप्ताह खेले जाएंगे. खासतौर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां के टॉप टाइर में एक आखिरी चैंपियंस लीग स्पॉट अभी भी दाव पे है बिटवीन लिवरपूल एंड बोर्नमुथ, जबकि सारा ध्यान रिलेगेशन जोन में टोटेनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम यूनाइटेड पर भी है. इधर द इजिप्शियन किंग मोहम्मद सलाह आज लिवरपूल के साथ अपना आखिरी मैच खेलेगा अलोंग विद एंडी रॉबर्टसन. पेप गार्डियोला का भी आज से 10 साल की प्रीमियर लीग यात्रा खत्म. उधर अल्वारो बेलोआ ने भी रियल मैड्रिड को अलविदा कहा. और इस बीच हल सिटी वापस प्रीमियर लीग में. कल प्लेऑफ के फाइनल में हल सिटी ने ऐन मौके पे जाकर मिड्लसब्रो को 1-0 से परास्त किया. 95 मिनट पर जाकर हल सिटी ने अपना हल निकाला. सो वहीं से ये नतीजे शुरू करते हैं चैंपियनशिप के प्लेऑफ के फाइनल में. इट्स हल सिटी 1 मिड्लसब्रो 0. खेल के 95वें 95 मिनट पर मैकबर्नी ने बर्न किया मिड्लसब्रो को. और ऐसे में जो आखिरी स्थान बचा हुआ था प्रीमियर लीग में आने के लिए वो ले गया हल सिटी. हार्दिक बधाई और स्वागतम. स्कॉटलैंड के स्कॉटिश कप के फाइनल में सेल्टिक की जीत हुई 3-1 से अगेंस्ट डनफर्मलाइन. सो इट्स ए डबल फॉर सेल्टिक. प्रीमियरशिप जीतने के बाद सेल्टिक का ये डबल है. हार्दिक बधाई. और इंटरनेशनल स्तर पर वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में कल मेक्सिको ने गाना को 2-0

उसे हराया। स्पेन के लालिगा में बस आज के लिए एक आखिरी मैच बचा है, बाकी सभी मैच कल समाप्त किए गए, रफा दफा किए गए। चैंपियन टीम बार्सिलोना की हार हुई, उसको कुछ हारना नहीं था इसलिए हार गया। वेलेंशिया 3-1, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का एक पहला गोल, फिर गावी गेरा, लुइस रोया और रोड्रिगेज ने बारी बारी से वेलेंशिया को 3-1 से आगे किया। हार्दिक बधाई बार्सिलोना को, दे आर द चैंपियन। और रन अप रियल मैड्रिड ने कल अपने सांतियागो बेनाबी में एथलेटिक को 4-2 से परास्त किया। गोंजालो गार्सिया, जूड बेलिंगम, किलियान एम्बापे एंड ब्राहिम डियाज ऑन टारगेट फॉर रियल मैड्रिड। सो ऐसे में बता दें कि रियल मैड्रिड के साथ बार्सिलोना पहले से यूरोपियन चैंपियंस लीग में है, साथ में विलारियल, एथलेटिको और बेटिस भी। बेटिस और एथलेटिको भी, विलारियल और एथलेटिको के बीच आज एक आखिरी मैच खेला जाएगा, बस ये मैच बचा हुआ है। तीसरे और चौथे स्थान के लिए ये संघर्ष है, ये जंग है, लेकिन सब के सब क्वालिफाइड हो चुके हैं। सो स्पेन के लालिगा के नतीजे विस्तार से सुनिए। अलावेस 1-2, सेल्टा विगो 1-0, स्पैनियोल 1-1, रेताफे 1-0, जिरोना 1-1, मलोका 3-0, बेटिस ने लेवांटे को 2-1 से हराया। वेलेंशिया 3-1 और रियल मैड्रिड 4, एथलेटिक 2। अल्वारो अबेलोआ ने कहा कि वो अब कोचिंग छोड़ देगा, रियल मैड्रिड को कोच करना छोड़ देगा। कहाँ जाएगा, कौन आएगा, क्या योजे मोरिनो आएगा रियल मैड्रिड में, सुनते रहिए। जर्मनी के जर्मन कप DFB पोकल में कल बैन म्यूनिक ने स्टुटगार्ट को 3-0 से तोड़ा। ये तीनों ही गोल हैरी केन के मैदान पर उतरने के बाद ही स्कोर किए गए। सो इट्स हैरी केन 3-0, एक डबल बैन म्यूनिक के लिए भी। हैरी केन ने 55वें, 80वें और 92वें 92nd मिनट पर एक के बाद एक तीन गोल स्कोर करके बैन म्यूनिक को ये कप जितवा दिया। सो बैन म्यूनिक को भी हार्दिक बधाई, इतने सारे गोल ये केन स्कोर कर रहा है, क्या इंग्लैंड के लिए भी वो इतना स्कोर कर पाएगा, देखते रहिए। इटली के सीरिया में 2 मैच, बोलोनिया 3-3, मिलान चैंपियन है। SS लाजियो ने पिज़ा को 2-1 से हराया। और अब आज के लिए बाकी सभी मैच खेले जाएंगे, बाकी सभी चैंपियनशिप के आखिरी मुकाबले होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लैंड की प्रीमियर लीग के साथ, जिसका 38वां एंड फाइनल वीक आज रात 7 बजे से आरंभ होगा। सभी के सभी मैच आज ही खेले जाएंगे रात 7 बजे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत एवे जाएंगे ब्राइटन के मैदान पे। बर्नली वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स। चैंपियन टीम आर्सेनल आज सिल्हर्स्ट पार्क में क्रिस्टल पैलेस के साथ अपना नया टाइटल का जश्न, अपने नए टाइटल का जश्न मनाएगा। सो आर्सेनल 22 साल बाद ये ट्रॉफी, प्रीमियर लीग ट्रॉफी फिर उठा पाया, उसको हार्दिक बधाई द गनर्स को। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल रात 7 बजे। फुलहम टक्कर लेगी न्यूकासल यूनाइटेड से। लिवरपूल के लाल आज एनफील्ड में होंगे अपने आखिरी मैच के लिए ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध। जीतना पड़ेगा, नहीं तो हार की स्थिति में बोर्नमुथ उन्हें पार कर सकता है, पर काफ़ी कठिन है। गोल डिफरेंस इनके बीच है 6 गोलों का अंतर है और 3 अंकों का भी अंतर। और जीत गया लिवरपूल, उधर एस्टन विला हार गया, तो लिवरपूल चौथे स्थान पर अभी भी आ सकता है। द विलेंस के लिए ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और पेप गार्डियोला के लिए ये मैच खेला जाएगा आज इतिहाद में, सिटी वर्सेस एस्टन विला। द विलेंस यदि 5वें स्थान पर आए तो एक छठी टीम भी यूरोपियन चैंपियंस लीग में पहुंच सकती है, ये पहली बार हो सकता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस बोर्नमुथ, सेंडरलैंड का मुकाबला चेल्सी से, टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन। द स्पर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला, उनको जीतना ही होगा या फिर एक ड्रॉ भी काफ़ी होगा। उधर वेस्ट हैम यूनाइटेड यदि जीत गया और टॉटनहम हॉटस्पर हार गया तो वेस्ट हैम इन, टॉटनहम हॉटस्पर आउट। सो इन एंड आउट टॉटनहम और वेस्ट हैम के बीच लंदन की एक टीम अवश्य ही बाहर जाएगी। लीग वन में भी आज प्रमोशन प्लेऑफ का एक फाइनल है बिटवीन बोल्टन एंड स्टॉकपोर्ट। और स्पेन के लालिगा में आज एक आखिरी मैच होगा विलारियल वर्सेस एथलेटिको। इटली के सीरिया में भी सभी आखिरी मुकाबले
आज के लिए रखे गए हैं. सो इट्स ए गुड बाय फॉर मोहम्मद सलाह. 2017-2026 नौ साल का गेगन प्रेसिंग फुल मेटल फुटबॉल अंडर यगन क्लॉप, उसी ने

0: मोहम्मद सलाह को लिवरपूल में लाया था, तब से मोहम्मद सलाह ने द रेड्स के लिए 257 गोल स्कोर किए विद द टू प्रीमियर लीग टाइटल्स और एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी। लिवरपूल के ऑल टाइम टॉप स्कोरर में वो तीसरे स्थान पर आता है, जस्ट बिहाइंड यान रश जिसने 346 और रोजर हेंट ने कुल 285 गोल स्कोर किए। द लेजेंड द फेरो की आज एनफील्ड में विदाई होगी अलोंग विद एंडी रॉबर्टसन, यानी एक युग समाप्त हुआ एंड ए न्यू पॉजिटिव ईरा विल होपफुली बिगिन एट एनफील्ड। टेनिस में आज से फ्रेंच ओपन रोलां गारोस आरंभ हो रहा है। 15 मिनटों के प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15% प्राइज मनी के घिरे से घिरे विवाद के साथ लड़कों में कार्लोस अल्काराज के की अनुपस्थिति में कौन रोक पाएगा विश्व नंबर एक यानिक सिनर को, इसलिए ये एक वन हॉर्स रेस मालूम पड़ता है। जबकि लड़कियों में अरीना सबालेंका को चुनौती देने के लिए एक से बढ़कर एक दिग्गज टेनिस की महारानियां मौजूद हैं। इस बीच ब्रिटेन का नंबर वन खिलाड़ी कैमरन न्यूरी तैयारी के दौरान घायल हो गया। फॉर्मूला वन मोटो रेसिंग चैंपियनशिप के कनाडियन ग्रां प्री में जॉर्ज रसेल आज पोल पोजीशन से रेस शुरू करेगा। क्वालिफाइंग सेशन के आखिरी लैप में कल उसने किमी एंटोनेली को पार किया। जनरल रैंकिंग में अब दोनों के बीच केवल 18 अंकों का अंतर है। क्रिकेट में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अपनी पहली सेंचुरी यानी 101 रन बनाकर पंजाब किंग्स को 7 विकेट से जितवा दिया। श्रेयस के पार्टनर प्रभ सिमरन सिंह ने 69 रन बनाए। आज इसी आईपीएल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध। सो इट्स अ फेयरवेल टू द फेरो मोहम्मद सलाह। कैसेमिरो भी आज अपना आखिरी मैच खेलेगा। रॉबर्टसन एंडी रॉबर्टसन भी पेप गार्डियोला। सो फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानी ते क्वार्ट्स, रिकासे लो लावो, ला लिनिया मोडेन प्रिसोक।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: मैं
1: जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SBICC पाए विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: US तड़का
1: RM2 Radio Musti।
2: एक दिन राहों में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। वे के लिए आपके लिए है RM2 Radio Musti। तो चलिए आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। We have Veena गंगा जी माताबा से next track मांग रहे हैं अपने हस्बैंड रवि के लिए, बेटी दूषिका और त्वेषा के लिए। एंड वी हैव उषा जी कोंचे से, आज है आपके भैया विष्णु जी का बर्थडे जो टैक्सी ड्राइवर की तरह काम करते हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 47th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु जी। एंड वी हैव छोटा साया नमोगू से, वो सेंड कर रहे हैं आप सभी को बिग हग एंड फ्लाइंग किस और डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना अपनी दादी माँ मीरा के लिए। एंड वो आज अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। बेस्ट विशेस दादा सुरेश की तरफ से, दादी मीरा उर्गू, छोटा शायाना विजेश, मामा मोक्षदा, फूफू विदुषी, नानी रिव्या जो हाँ पास ही। एंड वो बोल रहे हैं कि उन्हें ना भूलें। अरे ज़रूर जी, आपके लिए गाना चलाएंगे ज़रूर। एंड वी ऑल्सो हैव कनेक्टेड विद अस, यश वी हैव अनसुया जी निगो से सुन रहे हैं हमें और विश कर रहे हैं आप सभी को हैप्पी संडे। तो ऐसे ही लेट्स कीप द वाइब ऑन गोइंग आपके ही आरएम2 रेडियो मस्ती पर। नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम
0: टाइमलेस तड़का।
1: RM2 Radio

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 8 बजे बाद पेश बा भोजपुरी समाचार। सब लोग इनके नमस्ते बोबा सरोज हिल के नवा मेयर बिलाल भाटी एमएमएम के लुई ऑंद्रे टुसें के सामडी दोपहर के नगर परिषद के खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुनल गल ओ गैब्रिएला बाटू के जगह ले ली हवन रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव के जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर पद पर बनल रहेलन सिते बौकली के निवासी लुई ऑंद्रे टुसें एकर से अक्टे 2012 में भी मेयर रहल रहलन आप लोग के बता दे राजा कि लैंडी के काटबोन पोर्ट लुइस वाक्वा फिनिक्स और क्यूपिप नगर पालिका में चुनाव हुई गंगा तालाब और कौटोगल के घटना पर सुक्के गो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बुकोरी सामडी के कला और संस्कृति मंत्री महेन गुंडिया संगे मुलाकात कर लन ये बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्रा के बेहतर ढंग से नियंत्रित करे खातिर कईन गो सुझाव दिवल गल ये पवित्र स्थल पर आय हुआ पर्यटक से प्रवेश शुल्क लेवे के भी प्रस्ताव शामिल बाते कविराज बुकोरी के अनुसार ये व्यवस्था के कोनो संस्था के सहयोग से संचालित करल जा सकी जिमें स्थल के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण हो सके सुक्के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कईन गो वक्ता लोग शांति जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील कर लें जा कविराज बुकोरी सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखे की आवश्यकता पर जोर दिलन ओ लोगन से विभाजन और उकसावे से बचे के अपील करलन और बोलन कि मॉरिशस के एकता और साथ मिल के रहे के भावना के मजबूत करे के जिम्मेदारी सब कोई की हा मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सव में से गो गणेश चतुर्थी इबरिस मंगर 15 सितंबर के मनावल जाए जबकि अगले 1 तारीख 16 सितंबर बतावल गए रहल ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के मांग पर करल गल संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद ये निर्णय लेवल गल रिफॉर्म पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई खाद्य सुरक्षा कानून व्यवस्था और विदेशी श्रमिक के स्थिति जैसे मुद्दा पर चर्चा करल गल पार्टी के महासचिव रियाद सुबराती बरहल महंगाई पर चिंता व्यक्त करलन जिनके उनकर अनुसार कैन गुमाशन परिवार के प्रभावित करता वो खाद्य सुरक्षा कानून व्यवस्था और विदेशी कामगार के बेहतर नियमन के आवश्यकता पर जोर दिलन श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशस नागरिक के रोजगार के बढ़ावा देवता खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवत डुबरिस में 50 गुडविभाषी मॉरिशस नागरिक के भर्ती करल जाए निर्माण शिक्षा और होटल उद्योग प्रमुख क्षेत्र रही इन निर्णय के सुक्के कैबिनेट मंजूरी दिला कार्यक्रम के मकसद कनाडा में फ्रेंच भाषी प्रवासन के मजबूत करेगी हाँ श्रम मंत्री रेजाउतिम के अनुसार ये पहल मॉरिशस नागरिक के फर्जी नौकरी से बचाए में मदद करी सर्दी के मौसम अभी शुरू होल ही बातें बके ठंड के संगे संगे श्वसन संक्रमण के मामला में भी तेजी से बढ़ोतरी हुआ था 11 से 17 मई के बीच 4174 से जस्ती मामला दर्ज करल गलबा जबकि उकर से अगते के सप्ताह में इस संख्या

लगभग 3,750 नहल। डॉक्टर फाजिल कोडा बुकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरस के प्रसार के कारण आए हुआ दिन में स्थिति और गंभीर हो सकी। वो ये भी बोलन कि एक बार फ्लू होयला के मतलब इन है कि व्यक्ति दोबारा संक्रमित नहीं हो, काहे कि इस समय कई प्रकार के वायरस फैलता। विशेषज्ञ ये बोलन जा कि फ्लू और मौसमी संक्रमण से बचाव खातिर टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय में से एक हुआ। हालांकि टीका बीमारी होयला से अकदे लगवाए के चाहिए, नहीं कि लक्षण ऐला के बाद। एक साथ ही अच्छा जीवन शैली, पर्याप्त नींद, नियमित पानी पिए के और संतुलित आहार भी सर्दी में शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए में मदद करेला। दूसरे देश के समाचार में अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला सरकार क्यूबा पर दबाव बढ़ाए के तेज कर दिले बा। विशेषज्ञ बुलथवंजा की रणनीति काफ़ी हद तक वैसे ही दिखता जिसे कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अपने ले रहा। हालांकि जानकार के अनुसार क्यूबा के मामला वेनेजुएला से कहीं ज़्यादा जटिल, जोखिम भरा और महंगा साबित हो सकी। और लगभग 3 महीना से जारी संघर्ष के खत्म करे खातिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहल बातचीत में प्रगति के संकेत मिलल बा। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ के भूमिका निभाए होला। पाकिस्तान सामरिक के बुलंजा की वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता और आवत कुछ दिन बेहद अहम हो सके। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त है। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आठ बजकर 9 मिनट हो चला है, चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स
2: ओनली टू स्विनर्स।
3: देश में ऊंची लहर की चेतावनी जारी है जो कि सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जाएगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और दिन के दौरान हल्की बारिश होगी, खासकर ऊंचाइयों और दक्षिण में। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा, खासकर रात के दौरान। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 4 मीटर तक हो सकती हैं। उच्च ज्वार के समय लहरें जो हैं पश्चिम एवं दक्षिणी इलाके में तटों से भी टकरा सकती हैं, इसलिए मछेरों, मनोरंजन नौकाओं तथा आम जनता से अपील की जाती है, ज़ोरदार अपील की जाती है कि वे लोग उच्च ज्वार के समय इन तटों पर न जाएं। आज के लिए सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Faites fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La boîte de butter cookies d'Ancita à 129,95 et le set de vaisselle à dîner de 24 pièces à 999,95. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
6: On est tous winners!
1: RM2
4: Radio Musti.
1: Timeless Tarka.
4: RM2
7: Radio Musti.
1: Timeless Tarka.

0: एस तड़का
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे पीपल। कुछ गाने पुराने नहीं बल्कि मेमोरीज बन जाते हैं। बस एक धुन और सडनली आप वापस चले गए अपने स्कूल डेज, फैमिली रोड ट्रिप्स पर। सेकेंड आवर में फिर से आपका स्वागत है टाइम मिस्टर का शो विद निमनी, जहां पर म्यूजिक आपको घुमाने की एडवेंचर में निकल पड़ा है।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: Radio Musty.
4: Hits, music only.
3: Feels a

0: défis de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: यारा ओ यारा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत रखने वाले मुश्किल में भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी हिम्मत जुटाकर निकल पड़ो अपनी एडवेंचर पर।
0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2. Radio Musti.

0: is तड़का
1: RM2 Radio Masti।
2: अगर RM2 Radio Masti साथ में हो तो दिन ऐसे ही यूं बीत जाता है। आपके ये टाइमलेस हिट्स का सिलसिला फुल ऑन जारी है एंड आपको याद दिला देते हैं कि आप बन सकते हो विनर ऑफ 2 टिकट्स फॉर अ हेलीकॉप्टर राइड अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं अपना NBC Play 1.0 वाले ऐप को। साइन इन करके जो अकाउंट आप बनाते हो उसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 5499-1294 पर, फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो क्या आप बनना चाहेंगे विन ऑफ 2 टिकट्स हेलीकॉप्टर राइड के लिए? डू ट्राई योर लक एंड ऐसे ही स्टे ट्यून्ड टू RM2 Radio Masti।
3: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot de tickets chacun pour un hélicoptère joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
0: Timeless Tarka
1: RM2
4: Radio Masti
0: Timeless Tarka.

0: US तड़का
1: RM2 Radio Masti।
2: जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जना जी, ललिता जी, श्वेता हुकुम जी भी साथ दे रहे हैं, मांग रहे हैं अगला गाना अपने हस्बैंड रोशन के लिए। एंड वी आल्सो हैव अनसुया जी निकोव से, वी हैव हंस सैन जुलिया से, वी हैव आल्सो यश जो कनेक्टेड है हमारे साथ। तो यही पर इट्स 8:52 तो टाइम हो चला है फॉर मी टू गो एंड फॉर पूनम टू से हाय। तो यही पर आरएम जो रेडियो मस्ती पर जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए बॉली ब्रंच का सिलसिला जारी होने वाला है। एंड बिफोर दैट संक्षिप्त समाचार होंगे। सो यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एंड अ ग्रेट संडे अहेड।
1: RM2 Radio Musty feels a

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
3: Musti. टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। बोबासा रोज हिल को नया मेयर मिला है। एमएमएम के लुई ऑनरे टुसें को शनिवार दोपहर को नगर परिषद की विशेष बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गैब्रियल बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव की जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर बनी रहती हैं। इस सोमवार को काटोबोन, पोर्टलुइस, वाकोफिनिक्स और क्यूपिप नगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे। गंगा तालाब और कौटोगल की घटनाओं पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकील कविराज बकोरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महिन गुंडिया से मुलाकात की। इस बैठक में गंगा तालाब में पर्यटन यात्राओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिए गए। इनमें पवित्र स्थल पर आने वाले पर्यटकों में प्रवेश शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। कविराज बकुड़ू के अनुसार इस व्यवस्था को किसी संस्था के सहयोग से संचालित किया जा सकता है ताकि स्थल का बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हो सके। शुक्रवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वक्ताओं ने शांति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता की अपील की। कविराज बखोरी ने सामाजिक सद्भाव और देश की शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से विभाजन और उकसावे से बचने की अपील की और कहा कि मॉरिशस की एकता और साथ मिलकर रहने की भावना को मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है। संघ के मुख्य पंडित शांताराम राजू के अनुसार हिंदू पंचांग से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। विदेश में अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग ने शनिवार रात सनसनी फैला दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस परिसर के अंदर मौजूद थे। संदिग्ध हमलावर की पहचान 21 वर्षीय नसीर बेस्त के तौर पर हुई। खबर है कि उसने व्हाइट हाउस के बेहद करीब पहुंचकर फायरिंग की करने की कोशिश की, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इसे मार गिराया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मुगल रोड रिविया जोरापा में 71 साल की 71 ईयर ओल्ड श्रीमती सुजावंती लुबिन जो जगू से जान बल्कि पैदाइश नाम जगू और जो सुजा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के साथ ही 12 बजे इनके मकान मोगल रोड रिविया जोरापा से उठाकर दाह संस्कार के लिए पिटों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टू डेथ ऑफ बॉस्टन मोसेलम रामफल बुआमोंग प्लान डे पापाय में 33 साल की 33 ईयर ओल्ड श्रीवानी सेन अपादू जो चिब्रिये से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी माँ कावेरी अपादू के मकान मोसेल मोरामफल बुआमोंग प्लेंडे पापाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टू डेथ 1:30 PM रेजिडेंस ला मारी रोड ग्लैन पार्क वाकवा में 74 साल के 74 ईयर ओल्ड जनाब मामोद सईद कोडादिन जो सईद से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 10 बजे के मकान रेजिडेंस लामेरी रोड ग्लैन

0: पॉग वाकवा से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान जा जाएगा। फिनरल टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे हुए इन परिवारों के प्रति हमारी दीदी हमदर्दी है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: पॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? संडे है तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा स्माइल कीजिए, क्योंकि आप अगले 3 घंटे मूड रहेगा फुल ऑन म्यूजिकल और मस्ती से भरा। मैं हूं आपके साथ पूनम और आप शुरू हो चुका है बॉली ब्रंच, आप ही का प्रोग्राम। सो आगे बच चुके हैं 9:10, संडे का प्यारा सा दिन 24 मई 2024। चलिए भाई शुरू करते हैं आपका ये 3 घंटे का म्यूजिकल प्रोग्राम, जो कि आपको देने वाला है सुख और शांति। तो इंजॉय कीजिए ये गाने और मस्ती से भर जाइए। ये है आपका पहला गाना, इंजॉय कीजिए।
0: Body Branch
1: RM2 Radio Masti।

0: हैप्पी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:23 हो चुके हैं दोस्तों, और जरा इमेजिन कीजिए मॉरिशस का खूबसूरत व्यू हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड हो, और वो भी कपल राइड। तो सुनिए MBC प्ले और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार मौका। बस आपको करना क्या है, नया MBC प्ले यानी कि 1.0 डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, पुराना वाला जो ऐप है ना, जो जून में हम बंद कर देंगे, इसलिए आपको सिर्फ नया वर्जन ही डाउनलोड करना है। रजिस्टर करते ही मोबाइल पर जो आपका MBC OTT की तरफ से एक नाम के साथ

0: एक मैसेज आएगा आपको, आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके वीकडेज के लिए आपको हमें भेजना है 5499-1294 पर, और 18th से 20th मई तक रोज आपके लिए एक वैलिड एंट्रीज होंगी। और जो भी लिसनर्स शॉर्टलिस्ट होंगे ना, उसको शाम को जो है 5 से 6 बजे का जो रेडियो प्रोग्राम हमारा होता है उसमें आपको कॉल किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सही जवाब देगा वो बनेगा डे ऑफ द विनर, और फिर 29th मई को ग्रैंड फिनाले होगा, उसमें चुना जाएगा एक लिसनर जो जीतेगा हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए एमबीसी प्ले 1.0 और हो सकता है अगली उड़ान आप सबकी हो, और एंजॉय कीजिएगा कि बस, पर आपने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजना है अभी इसी वक्त, कीजिए डाउनलोड और मुझे बताइए, और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499-1294 पर।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
2: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à la chance des grands gagnants pour un pot des tickets chacun pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
3: RM2 Radio Musty Feels a musty.
4: Oh, Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudvaja.

0: हस्बैंड होकर तेरी तो है गेम ओवर।
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti.
1: क्या बात है भाई, मूड आज मेरा बन गया है कुछ खाने पीने का, क्योंकि बाहर से प्यारी सी खुशबू आ रही है। आई थिंक सो किसी घर में गातोपीमा बन रहा है या कोई हमारी कैंटीन में बन रहा है और ऐसी खुशबू आ रही है या कोई लेकर आया है, बट कुछ तो है। और इसीलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि भाई डाइट को करो थोड़ा सा साइड में, क्योंकि संडे है भाई, संडे भी तो थोड़े ना हम डाइट को ध्यान देंगे और कुछ घर पर बनाओ, कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। घर में किसी को बोल सकते हैं कि कुछ अच्छा बना दो, नहीं बना सकते तो खुद ट्राई करो, और अगर और खुद ट्राई नहीं करना चाहते तो किसी को फोन करके बोलो भैया मेरे लिए लेकर आ, अगर वो नहीं लेकर आता तो कहीं का बाहर जाके कुछ प्लान कर लीजिए। पर प्लान जरूर कीजिए, क्योंकि घर में सिर्फ बैठे रहना और संडे वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो है ना आपका है। संडे इंजॉय कीजिए और गाने सुनते रहिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं इतने सारे ढेरों मैसेजेस हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और भी भेजिए और अगर आपकी कोई चॉइस है, कोई फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं 5491294 पर। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद कि आपका राशिफल क्या होगा, पर उससे पहले हम आपको एक बात ज़रूर बताएंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा जो MBC का जो न्यू वर्जन है उसको लोड नहीं किया है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप ज़रूर उसको लोड कर लीजिए और हमें भेजिए उसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसके बाद आपको मिल पाएगा एक हेलीकॉप्टर राइड।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: RM2 Radio Musti पर अब वक्त है राशिफल का, तो सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और काम में स्पीड बनी रहेगी। नई सोच आपको आगे बढ़ाएगी और मूड भी अच्छा रहेगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज दिल हल्का और खुश महसूस होगा। आपको लोगों के साथ बिताया समय अच्छा लगेगा। लकी कलर बनेगा ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज मूड को भी पॉजिटिव बनाएगी और आपको किसी का साथ भी मिलेगा। लकी कलर बनेगा आपका येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज घर और फैमिली से गुड वाइब्स मिलेगी, मन शांत रहेगा और दिन स्मूथ रहेगा। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी पर्सनालिटी सबको अट्रैक्ट करेगी। कॉन्फिडेंस के साथ हर काम आसान लगेगा आपको और हर काम आप आसानी से कर पाएंगे। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज प्लानिंग और फोकस दोनों स्ट्रांग रहेंगे। छोटे एफर्ट्स भी अच्छा रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट दिखाने के लिए आपको कुछ काम करना होगा, तो आप बस पूरे दिन अपने आप को बिजी रखें। लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज बैलेंस बना रहेगा और रिश्तों में स्वीटनेस बढ़ेगी। दिल खुश रहेगा और मूड लाइट फील होगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज फोकस क्लियर रहेगा और एनर्जी स्ट्रांग महसूस होगी। आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जिसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। लकी कलर है आपका मेहरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: आज फन और पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेगी। कुछ नया करने का मूड बन सकता है, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। लकी कलर बनेगा आपका पर्पल, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत का अच्छा फील मिलेगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। डिसिप्लिन आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपको परिवार का बहुत ही स्ट्रांग एंड पॉजिटिव कहते हैं ना कि एक होल्ड मिलेगा आपको। लकी कलर बनेगा आपका ब्राउन, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज क्रिएटिविटी एंड फ्रेश आइडियाज आएंगे। आपकी यूनिक सोच लोगों को इम्प्रेस करेगी। लकी कलर बनेगा इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मन शांत रहेगा और छोटी बातें खुशी देंगी। म्यूजिक और गुड वाइब्स अच्छा मूड बनाएगा। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं थी आपके साथ RM2 रेडियो मस्ती पर पूनम। ये था आपका आज का राशिफल। पूरा दिन आपका पड़ा है, बस आपको हंसना है, मुस्कुराना है और आपको साथ देना है अपने कामों का। बस इंजॉय कीजिए आपके कामों को।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Body Branch.
4: RM2 Radio Musti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:55 हो चुके हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका वेलकम है। कहीं मत जाइएगा, मूड बस हमारे साथ रखिए, गानों के साथ रखिए। ये गाने जो है ना मूड को तो रिफ्रेश करते हैं, साथ में आपके टाइम को भी बहुत ही मैनेज करते हैं। पता कैसे? क्योंकि आपको साथ साथ रेडियो सुनते रहिए, साथ साथ घर के काम करते रहिए, सारा मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। तो इस समय साथ हमारे जुड़े हुए हैं गुबार देवी चरण जी ललित जी USA से, यानी शादीप, मनीषिका, मिनिक्षा दोमा जी, प्रिया, अर्जुन, कमलेश रानी, सेतुल जी और सभी जो भी लिसनर्स हमारे को सुन रहे हैं इस टाइम, हम इतना ही कहेंगे, बस एंजॉय कीजिए आपके गाने। ये बड़ा झुमका जो गाना है ना बहुत ही मस्त है, अगर आपको भी डांस करने का मन कर रहा है तो बस कर सकते हैं। और इसके साथ थोड़ी देर के बाद सुन पाएंगे आप संक्षिप्त समाचार।
2: RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: टाइम चेक सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा से। करुणा आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। श्रम मंत्रालय कनाडा में मॉरिशियनों के रोजगार को सुविधाजनक बना रहा है, खासकर फ्रांकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत। 2 वर्षों में पायलट आधार पर 50 द्विभाषी मॉरिशियनों की भर्ती की जाएगी। निर्माण, शिक्षा और होटल उद्योग प्रमुख होंगे। श्रम मंत्री रेजा उत्तम के अनुसार ये पहल मॉरिशियन नागरिकों को फर्जी नौकरियों से बचाने में मदद करेगी। बोबासा रोसिल का नया मेयर एमएमएम के लुई ऑन्द्रे टुसें बने हैं, जिन्हें कल नगर परिषद द्वारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के तहत चुना गया। उन्होंने गाब्रिएला बाटू की जगह ली है। रेजिस्टेंस से कालतेरा चीफ की जीना पुनुसामी डिप्यूटी मेयर बनी रहती हैं। गौरतलब है कि इस सोमवार को काचबोन, पोर्टविस, वाक्वाफिनिक्स और क्यूपिप नगर परिषदों में भी मेयर और उप मेयर के चुनाव होंगे। मॉरिशस में मराठी समुदाय के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से गणेश चतुर्थी इस वर्ष मंगलवार 15 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि पहले इसकी तारीख 16 सितंबर घोषित की गई थी। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया। विदेश में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और 21 लोग घायल हुए हैं। शहर के मेयर ने बताया कि रिहायशी इमारतों, स्कूल, दफ्तरों और मेट्रो ढांचे को नुकसान पहुंचा है। और लगभग 3 महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। ईरान अमेरिका और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिन बेहद अहम हो सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
4: Body Branch RM2 Radio Must See.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: 10:21 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की। जी हाँ, जो कि ऐसे एक स्टेट से आते हैं जो बल्कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यस, उनको कहते हैं उत्तराखंड, वो जगह जहाँ ऊंचे पहाड़, झरने, हरी वादियाँ और नीला खुला आसमान और ऐसी ठंडी ताज़ी हवा जो इंसान के अंदर तक सुकून भर दे। शायद वही वजह है कि जुबिन की आवाज़ में इतनी सॉफ्टनेस महसूस होती है, इतनी सॉफ्टनेस, इतनी काल्मनेस होती है और वो एहसास हम सबको फील होता है, क्योंकि आज वो जहाँ से वो आए हैं और बचपन से उन्होंने इतना सारा, ये जो कहते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थे और उन्होंने बचपन से ही गिटार सीखना शुरू किया और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखने शुरू किए और पहाड़ों की जो खामोशी होती है, पंछियों की जो आवाज़ होती है और जो नेचर की और जो सिंप्लिसिटी होती है आसपास की, वो आवाज़ और वो सुकून उनके दिल में है। इसीलिए कहते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ हर किसी के घर में जब बजती है ना, तो बस ऐसे सुकून का एहसास होता है कि बस फिर दिल नहीं करता कुछ और धूम धड़ाका सुनने का। बढ़ क्या करें, हम रेडियो पे हैं और हमको धूम धड़ाका भी चलाना पड़ता है क्योंकि आप सबको हर चीज़ पसंद आती है। तो एंजॉय कीजिए आपके धूम धड़ाके वाले गाने भी, पर ये जो नेक्स्ट गाना जाएगा वो जाएगा सचिन काजल शर्वानी श्रवण आहान के लिए, क्योंकि वो उन्होंने इतना बड़ा सा मैसेज लिखा, हेलो हेलो हेलो हेलो रेडियो मस्ती, प्लीज़ मेरा गाना चला दो। तो चलिए भैया, आपका गाना चलाते हैं और इन्जॉय कीजिए आप अपने गाने, उसके बाद बात करते हैं और बहुत सारी। तो ये है आपका प्रोग्राम, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: FM 2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Bolly Brunch, RM2, Radio Musti.
2: 10:31 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं फैशन की। भाई फैशन के बिना तो हम जी नहीं सकते, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। आजकल फैशन के बिना कहाँ चलती है हमारी गाड़ी। तो हमारे पास वे मैं ये सोचती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फैशन में। आप कैसा भी कपड़ा खरीद लो, कितना भी सुंदर खरीद लो, कलर कैसा भी खरीद लो, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जो उसको प्रॉपरली आयर्न्ड किए हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार हम होते हैं कि कपड़े पड़े होते हैं अंदर और लगता है कि हाँ हैंग किए हुए हैं और बस निकाले और डाल लिए। इस तरीके से नहीं होता है, इससे आपका जो लुक होता है वो बिल्कुल डल हो जाता है। जब तक नीट फ्रेश लुक नहीं आती तो वो बिल्कुल, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्लोथ हो, कितना भी अच्छा हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा एक हैंडी स्टीमर जो है आपको हमेशा कैरी करना चाहिए, या तो घर पर रखना चाहिए, जो कि जो कितने भी वो थिक जो उसमें कांथा वर्क होता है, किसी भी तरीके का वर्क होता है, वो स्टीमर जो होता है उसको अच्छे से आयरन कर देता है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी तो अपग्रेड होती है, आपका क्लॉथ भी अपग्रेड होता है और उससे आपका क्लास भी बनता है। ये है फैशन टिप आज का, तो एंजॉय कीजिए फैशन टिप के साथ में। बट आप अपने कपड़ों को जब कैरी करें तो बहुत ही क्लासी तरीके से कैरी कीजिएगा, क्योंकि स्टीमर जो है आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, और फैशन यही है कि हमेशा क्लासी बने रहिए।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:46 हो चुके हैं दोस्तों और अब है टाइम आपके गेम खेलने का। हाँ जी, अगर आपको गेम खेलना है तो अब आप सुन सकते हैं ये फैज
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: Behind every piece at Fab India, there's a pair of skilled hands. Artisans who weave, dye, print, and craft with passion, keeping centuries of tradition alive. Today, that craftsmanship is here for you to discover. Explore Fab India's handcrafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship.
3: Sa qualité deal là, 5000 roupies off le Samsung Galaxy A37 et A57. En plus, 12 mois, zéro l'intérêt. Pas si ça, prends-les payé après 6 mois. Puis ça, 10 dans la case, maman, que 3 dizaines qui vous gagne ça. Eh oui, ça l'offre Samsung Galaxy A37 et A57 là. Vous pouvez gagner 10 dans 3 dizaines et le 3 dizaines.mu avec facilité crédit par Sim Finance ou Rogers Capital. La case, maman, ça a un lot même ça.
4: 3 dizaines. Bien plus encore.
5: Bolly Branch, RM2, Radio Masti.
6: के साथ खेलिए और पाइए मौका जीतने का जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट मॉरिशस 2026 का प्लैटिनम टिकट. यस हाँ दोस्तों, ये वही लाइव कॉन्सर्ट है जहां जुबिन नौटियाल अपने सुपरहिट सॉन्ग्स के साथ आने वाले हैं मॉरिशस, यानी कि सैटरडे 30 मई 2026 SVICC पाई में रात को 8 बजे. तो आपका सवाल है और द गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो ticketbox.mu. आपको बस बताना है जुबिन नौटियाल के बारे में. तो जुबिन नौटियाल के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये गेम खेलनी है कि जुबिन नौटियाल जी कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या देहरादून उत्तराखंड रहते हैं. तो ये द गेम वॉज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो ticketbox.mu. आपको सिर्फ इतना बताना है कि जुबिन नौटियाल मुंबई रहते हैं या देहरादून उत्तराखंड. तो जल्दी से भेजिए अपना सवाल और जवाब भी J54991294 पर और विनर जीत सकते हैं एक प्लैटिनम टिकट. और टिकट की रिजर्वेशन अगर आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारी टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है, तो हॉटलाइन टिकट जो आपका नंबर है वो है 2146464. इस शानदार इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स. और आप हमें आंसर दीजिए फटाफट से, फिर हम इस

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपी सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं अभी से संक्षिप्त समाचार। अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। बोबा सेंट रोजेल के नए मेयर लुई आंद्रे टुसें बने हैं। वे मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिस पार्टी से हैं। शनिवार दोपहर को नगर निगम की एक खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के नियमों के तहत उन्हें चुना गया। वह गैब्रिएला बातू की जगह लेंगे और उनकी मदद के लिए जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर के पद पर बनी रहेगी, जो रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव पार्टी से है। सिटी बाकले के रहने वाले लुई आंद्रे टुसें इससे पहले साल 2012 में भी मेयर रह चुके हैं। शुक्रवार को गंगा तालाब यानी कि ग्रांड बासे में हुई घटनाओं और कांटोरेल में हुए हमले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। इसके बाद वकील कविराज बोकोरी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री मायन गुंडिया से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखे गए। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाना। इन सुझावों में एक मुख्य बात यह है कि इस पवित्र धार्मिक स्थल पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस लागू की जाए। वकील कविराज बकोरी के अनुसार इस प्रणाली को किसी संस्था या सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के साथ मिलकर चलाया जा सकता है ताकि इस पवित्र जगह की देखभाल और सुरक्षा अच्छी तरह से हो सके। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुके हैं। सरकार एक पब्लिक हेल्थ एक्ट कानून लागू करेगी, जिसके तहत सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम 2025-2029 में ऐलान की गई इस पहल के तहत एक सदी से भी ज्यादा पुराने मौजूदा कानून पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि देश को ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा मिल सके जो आज की महामारी संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिससे ट्रेन को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विस्फोट इतना भयंकर था कि इसके प्रभाव के आसपास खड़ी कम से कम 10 गाड़ियां भी उड़ गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। अशोक समाचार सुनते हैं। मोरेल रोड्रिगेज डू रैम्पोर्ट में 71 साल की 71 years old की श्रीमती सुदियावंती लुबिन पैदाशी नाम जोगू, और जिन्हें सब लोग सुदिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के घर मोरेल रोड रिवेज रॉम्पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रोड लाफ्लोरा में 66 साल के 66 years old के श्री देवानंद जोकुआ जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के

0: 4 बजे आज शाम के 4 बजे उन्हीं के घर रारोद लाफलुगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीजानी गोसबैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: मॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:10 हो चुके हैं दोस्तों और आप खेल रहे थे हमारे साथ प्यारी सी छोटी मोटी सी गेम्स। और मैं आपके साथ यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी बैठे हैं आप ये ज़रूर बोलिए लव यू जिंदगी। सच बात है ज़िंदगी है तो हम कुछ गेम खेल सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, कुछ जो हमारे दिल के अंदर जज्बात होते हैं उसको निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि अरे भैया ज़िंदगी हम भी तेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो चलिए भैया आपके लिए हमने एक गेम खेली थी थोड़ी देर पहले, उसका आंसर भी तो देना है। आंसर आपने दिया बट हमने अब बस विनर डिसाइड करना है और डिसाइड भी कर चुके हैं, बस आपको बताना है कि विनर का नाम क्या है। तो हमने रेडियो मस्ती के साथ आपने खेला था जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट मॉरिशस 2026 और इसमें आप जीत पाते प्लैटिनम टिकट। हाँ दोस्तों

0: वही लाइव कॉन्सर्ट जहां नोबी जुबिन नौटियाल अपने सुपरहिट सॉन्ग्स के साथ आने वाले हैं मॉरिशस, यानी कि सैटरडे 30 मई 2026 SVICC पाए में रात को 8 बजे। भाई शुरुआत का टाइम तो 8 बजे है, एंड होने का कोई टाइम नहीं होता है, मतलब जो हमें लगता है, क्योंकि जब तक हमारी मस्ती चलती रहती है तब तक ये सब कुछ चलता रहता है। तो जुबिन नौटियाल का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और इतने बेतहाशा बेधड़क, मतलब इतने सारे लोगों ने राइट रॉन्ग सब आंसर्स दिए, कई लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए, कईयों ने एड्रेस नहीं दिए, कईयों ने कुछ नहीं बताया, पर कईयों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए। उसमें से हमने एक ही चुनना था जो हम चुन चुके हैं अपना विनर। तो चलिए भाई बताते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा था। हमने पूछा था कि जुबिन नौटियाल रहने वाले कहाँ के हैं। पहला पूछा था कि मुंबई के रहने वाले हैं, सेकेंड देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो राइट जवाब था और उसका जो आंसर भी मिला वो भी हम बताते हैं कि किसने राइट आंसर दिया। पर ये जो गेम थी खेली गई थी ग्रेविटी जीरो ticketbox.mu की तरफ से, और क्वेश्चन हमने पूछा और आंसर भी हमें मिला, तो आंसर था सेकंड यानी कि बी देहरादून उत्तराखंड, और हमारी विनर बनी है दिल करता है तालियां बजती रहें क्योंकि विनर हमारी बहुत ही क्यूट सी पाई है, प्यारी सी अनीशा बेपत सुकर जी, जिन्होंने जीता है प्लैटिनम। यस प्लैटिनम हमारी टिकट को, और आप जा सकती हैं 30th मई को देखने के लिए जुबिन नौटियाल का ये कंसर्ट जो कि ये गेम थी हमारे लिए ग्रेविटी जीरो ticketbox.mu की तरफ से। और अगर आपको भी अपनी टिकट्स बुक करवानी है, रिजर्व करवानी है, तो 2146464 पर आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट और ले सकते हैं जुबिन नौटियाल के लाइव कॉन्सर्ट की टिकट्स। इंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने भी खेला। अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, एवरी डे हम बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा और साथ में खेलिएगा और फिर से जीतिएगा। ये है आपके लिए गाना, सभी के लिए उनका फेवरेट
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:22 हो चुके हैं और दोस्तों आपको पता है कि संडे को दो चीज़ें हमेशा हम लोग ज़रूर सोचते हैं। पहला सोचते हैं क्या खाएं आज पूरे दिन में, और दूसरा हाय कल फिर से मंडे आने वाला है, काम पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। बट कोई बात नहीं, ये भी सब करना पड़ता है, क्या करें। चलिए भैया हम दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय जो गाने की फरमाइश की जा रही है ना, वो सरोजनी नगाही उजूल जी के लिए है और एक प्यारा सा बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे सेकंड बेबी रियांश का प्रयाग जो कि रोड्रिक्स है, रैन श्वेता रविश प्रीशा लुवेश आपादू फैमिली उनको विश कर रहे हैं। उसके साथ में ही निर्मला जी भी जुड़ी हुई हैं, राजन रघुपति जी भी जुड़े हैं और उन्होंने बहुत ही प्यारी सी बात की है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हमेशा बोलो लव यू जिंदगी, और उन्होंने लिखा है दिल बना के लव यू जिंदगी। यस लव यू जिंदगी, हमारी जिंदगी है तो भैया सब कुछ है, नहीं तो क्या है। उसके साथ में ही प्यारा सा बर्थडे एक और आ गया है, भाई किसका आ गया है, कृष्णा जी विश करना चाह रही हैं अपने भाई कुशल जी को, और वो उनका बर्थडे है और उनको कह रही हैं कि आपको बहुत सी सक्सेस मिले, गुड हेल्थ मिले, मामा बबीता, पापा विनय, जीजा कुनाल, नानी जो मोनीति एंड छोटी सिद्धि सभी RM2 रेडियो मस्ती के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको विश कीजिएगा और उनको बस हमेशा खुश रखिएगा। तो हम तो हमेशा खुश रखते हैं और हम यही कहते हैं गाने सुनो, इंजॉय करो और जिंदगी को और काम साथ साथ करो। और रमेश जी भी जुड़े हुए हैं पंजाब से और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और बस इतना ही कह रहे हैं कि जो गाना नेक्स्ट चलाइएगा ना, वो थोड़ा डांस वाला चला दीजिए प्लीज, हमें डांस करने का मन कर रहा है। अरे अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो मुझे भी डांस करने का मन कर रहा है। चलो भाई चलाते हैं हमारा डांस गाना।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: खुरकन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी में रखवाली चाट तरी बांकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊंगा।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: मस्ती ब्रांच
1: और M2 रेडियो मस्ती। 11:42 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे थे करण ओजला की आवाज़ में हुस्न तेरा तौबा तौबा। क्या बात है ना, ये गाना इतना अच्छा लगता है ना मुझे। मैं कहती हूँ उसके स्टाइल, उसकी स्टाइलिंग और उसके क्लोथ की जो ब्लैक लुक होती है, हाय क्या बात है। पर उसके साथ में ही भाई हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनका बर्थडे है। स्पेशली हमारे लिए एक कॉल आया है इंडिया से हिमानी का और उनका परिवार उन्हें विश कर रहा है और वो बोल रही है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करती थी पर उसको ऐसी आदत पड़ी है RM2 रेडियो मस्ती सुनने की कि वो इंडिया में वापस आ चुकी है पर फिर भी वो RM2 रेडियो मस्ती ही इंडिया में सुनती है और आज उसका बर्थडे है, प्लीज़ उसको विश कर दिया। अरे भाई हम तो बहुत खुश होंगे कि हमारे मॉरिशियस इंडिया में भी सुना जाता है ये रेडियो और उसके साथ में उनका अटैचमेंट अभी भी है। तो हम आपको विश करते हैं हिमानी, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके साथ में विशेष जी भी हैं जो कि वाकवा से हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे आज कोई विश करने वाला नहीं है क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, क्या आप मुझे विश कर सकते हैं। अरे भाई क्या बात होगी, आज तो आपने क्यों किसी को नहीं बताया कि आज आपका बर्थडे है, पर हम आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। और जब केक कट करें तो मुझे याद कीजिएगा और मैं आपके साथ हूँ। उसके साथ में एक और भी हमारे साथ में एक और लिसनर है जिनका आज बर्थडे है, केशनी बसेसर जी का, जिनको ढेर सारी विशेज दे रहे हैं उनकी मामा कामिनी, पापा शैलेश, दादी चंद्रानी, हस्बैंड शान, लक्ष्य, तनिष्ठ एंड पूरी गोविंदा फैमिली मोका से जो कि, और हम यही कह रहे हैं और पूरा परिवार भी उनको यही कह रहा है कि बहुत सारी खुशियां आपको मिले, हेल्थ मिले, स्माइल मिले और हमेशा प्यार से रहो। क्या बात है, हम तो ये सारी विशेज़ आप सबको देते हैं जिनका भी आज बर्थडे है। बस इंजॉय कीजिएगा अपना बर्थडे, सेलिब्रेट कीजिएगा और हंसते रहिएगा। ये पूरी हमारी पूरी MBC टीम की तरफ से आप सबके लिए।

0: Body Brunch RM2 Radio Masti
1: तो दोस्तों 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। आप संडे को फुल एंजॉय करिए फैमिली फूड एंड गुड मूड के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी म्यूजिक और सुपर हिट सॉन्ग्स के साथ। मेरे बाद आएंगी हंसनी लव लाउंज लेके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।

0: time to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: सभी को नमस्कार. चेक योर टाइम. दिन के ठीक 12 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार हंसिनी श्रोताओं को भी नमस्कार. राधा 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. गणेश चतुर्थी मॉरिशस में मराठी समुदाय के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस साल ये त्योहार मॉरिशस में बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाएगा. ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है. फेडरेशन के मुख्य

पुजारी शांताराम रज्जू ने बताया कि हिंदू पंचांग को देखने के बाद ये निर्णय लिया गया, जिससे त्योहारों की सही तारीख तय की जाती है। पहले सरकार द्वारा जारी साल 2026 की आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट में 16 सितंबर को सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी। अब इस तिथि को बदलने के लिए सरकारी आदेश में जरूरी

0: बकुगी ने शनिवार को कला एवं संस्कृति मंत्री महेन गुंडिया से मुलाकात की। इस कॉन्फ्रेंस में मंत्री इस बैठक में मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखे गए। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था को बेहतर बनाना। इन सुझावों में एक मुख्य बात यह है कि इस पवित्र धार्मिक स्थल पर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए एंट्री फीस लागू किया जाए। कल रिफॉर्म पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया जिसमें देश के कई जरूरी मुद्दों पर बात की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई, खाद्य सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विदेशी मजदूरों की स्थिति पर चर्चा हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिफॉर्म पार्टी के महासचिव रियाद सुबहाची ने बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती लागत के कारण मॉरिशस के कई परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोबा सेंट रोजेल के नए मेयर लुई आंद्रे टुसें बने और वे MMM पार्टी से हैं। शनिवार दोपहर को नगर पालिका की एक खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के नियमों के तहत उनको चुना गया। वे गैब्रिएला बातू की जगह लेंगे। उनकी मदद के लिए जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर के पद पर रहेंगी जो रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव पार्टी से हैं। सिटी बॉकले के रहने वाले मेयर लुई आंद्रे टुसें इससे पहले साल 2012 में भी मेयर रह चुके हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि इजराइल और अन्य सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफी हद तक तय हो गया है। ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम विवरणों पर चर्चा की जा रही है। उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि एक समझौता काफी हद तक तय हो गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और सूची में शामिल अन्य विभिन्न देशों के बीच अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कारिकाल गली प्लेन वेट में उनासी साल के 79 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद हसम जोन जिन्हें सब लोग हसम के नाम से भी जानते थे वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान कारिकाल गली प्लेन वेट से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए प्लेन वेट स्थित रू कोटों कि बिलाल मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे एट नून, एवेन्यू दे क्वाटर वेयर मोंटिडामे, एवेन्यू दे क्वाटर वेयर मोंटिडामे, 66 साल की, 66 इयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी मुनीजा ओसेन बोकस, मिसिस बीबी मुनीजा ओसेन बोकस, पैदाइशी नाम मनबोध और जिन्हें सब लोग मुनीजा के नाम से भी जानते थे वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दोपहर के दो बजे उनके शोहर जनाब बाई रियाज ओसेन बोकस के मकान एवेन्यू डी कैटो वेयर मोंटिडा से निकालकर दफनाने के लिए मेजिन कोंडुमास्का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टूडे एट 2 PM, नंबर 256 मेनाजरी गली कासिम, नंबर 256 मेनाजरी गली कासिम, 78 साल के, 78 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रीति कुमार बागोबन, जिन्हें सब लोग गोप के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री लव कुमार बागोबन के घर नंबर 256 मेनाजरी गली काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Love Lounge. Yeah, Ishq Mohabbat Love Lounge.
1: 12:13 हो गया है, एक बार फिर से हम चले आए हैं टू बी विद यू, यस, प्यार के इस दुनिया में. And this is our love lounge. शुरुआत हो गई है अच्छे से, शुरुआत with the greatest song from this movie. और अभी से लेकर let's say yeah till 2 p.m. हम रहेंगे ना आपके दरमियान, आपके साथ देने के लिए. And it's a Sunday, it's fun day, it's a family time. और इससे मैं कुछ प्यार भरे गाने पेश हम करने वाले हैं to make it more joyful. Really hope कि सुबह से सब कुछ अच्छा जा रहा है. And really hope कि सब ठीक है on your side. And यहाँ पर ready है आज का ये collection to entertain you. Beautifully yours, that will be Love Lounge. Special thank you to you, Poonam. शुभ से actually इस दिन को और भी मदमस्त बनाने के लिए विद ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स इन आज का बॉली ब्रंच. एंड अभी आई गेस वो अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच लेने जा रही है, ये तो अभी कंफर्म बाकी है, या फिर सीधे ब्रंच. सो जितने भी हमारे परिवार इस समय बस बैठे हुए हैं, दे आर अताबला लिसनिंग टू अस. मे बी खाना पीना हो रहा है, दावत है किसी के यहाँ, आप जा रहे हो, या फिर शादी वाला सीज़न है, बंठन के आप जाएंगे टू लुक मोर ग्लैमरस. यू आर स्टिल इन द ब्यूटी पार्लर्स, जल्दी करो, यहाँ पर टाइम कुछ लिमिटेड है, आपको बस घर जाना है टू गेट रेडी. और शादियों में जाना है, सगाई में जाना है, एनी टाइम जो आपको लगता है स्पेशल है. सो वी आर हियर टू मेक इट इवन मोर स्पेशल, और खास बनाते हैं. सो वेलकमिंग यू इन द वर्ल्ड ऑफ लव.
0: लव लाउंज
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
0: लव लाउंज.

0: Love Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musti.
0: Love Lounge.
3: And we are here to set the mood in a very special way. Yahan par, thankfully to Love Lounge, happening live on Radio Musti, jahan par bas aapne dosti ka haath badha liya hai. Aur hum to chale aayenge, of course, to welcome you in the world of love. Pyar ke saath suniye kuch pyar bhare gaane. Definitely to bring you some more love around. And weekend ka ye time chal raha hai. Ready ho ki sab mast hai, sab kuch chakas hai. And इस ब्यूटीफुल मौसम में कहीं पर तो अच्छी सी धूप खिली हुई है, लेकिन ऐसे में कुछ जगहों पर ऐसा अनुमान है कि कुछ बारिश होने वाली है. लेकिन जहां पर सुहाना मौसम है, मे बी आप बस प्लान बना रही हो कि कहां पर जाना है, बच्चों के साथ एक दिन बताना है, टू मेक इट अ वेरी हैप्पी फैमिली डे. सो व्हाई नॉट, आपने रेडियो मस्ती को शामिल करवा लिया है. दैट्स ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. सफर को जारी रखते हैं, 2 PM तक यहाँ हम सुनी है जो आपके साथ है. वेलकमिंग यू इन लव लाउंज.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: Cash Bhari Bati, of course, in your Love Lounge. We are celebrating your Sunday, 24th of May, right here on Radio Masti, जहाँ पर भी साथ जारी है. It's a pleasure to welcome you. और हम तो इस म्यूजिकल जर्नी को सेट करने वाले हैं आपके साथ. थैंक यू फॉर बीइंग द म्यूजिक हमसफर विद आज हंसनी अप टिल 2 p.m. Really hope you

जो हमारे गाने हम लेकर आ रहे हैं जो कलेक्शन रहने वाला है अप टू टू आप सेंड करेंगे और हाँ उन्हीं के साथ आप कनेक्ट करेंगे आपके मैसेजेस को. अगर आप किसी को याद करना चाहेंगे वी आर हियर टू वेलकम यू ऑन 549-1294 एंड अभी एंजॉय योर फैमिली डे. परिवारों के साथ आप इस दिन को और भी खास बना लीजिए और भी मदमस्त बना लीजिए क्योंकि हमारा ये मानना है परिवार जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा होता है जहाँ प्यार प्यार भी मिलता है और अपनापन भी. एंड वी हैव इट फॉर ऑल द डियर वंस लिसनिंग टू अस राइट नाउ टू मेक इट फन टू मेक इट लविंग एंड एक एक याद में हो जाए ऑफ कोर्स हो जाए. ये प्यारा सा नजराना हमारे सभी लिसनर्स के लिए जहाँ पर साथ जारी हो गया है जस्ट टू लिसन टू लव लाउंज. हम ऑफ कोर्स डेडिकेट करना चाहेंगे ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशली फॉर मंसूर जी के लिए एंड फॉर ब्रदर विशाई जो इस दिन को और भी खास बनाते हुए वे जो मस्ती को ऑन कर लिया है. वेलकम गाइस एंड विश यू

ये प्यार है, ये इंतजार है, ये कशिश है प्यार की. हैपनिंग राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती फॉर आज का लव लाउंज. और एक हसीन गाना जो चल रहा है आप लोगों के नाम, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 1 बजे के समाचारों की ओर. और इसके बाद हम तो आएंगे ना आप लोगों का साथ निभाने के लिए फॉर द सेकंड आवर.

0: Love Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musti.
0: Love Lounge. Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: North, South.
0: 103.5.
2: East, West.
0: 96.4.
2: Center.
0: 99.4.
1: RM2.
0: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: Good afternoon, everyone. Check your time. It's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ. आपका नमस्कार पूजा.
4: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार. अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज रविवार को बुबासे में संगठन अफ्रीकन पीपल वॉइसेस संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया. मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान पान अफ्रीका और आने वाले विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज फहराया गया. बोबासे रोज हिल के नए मेयर लुई आंद्रे टुसें बनी हैं. वे एमएमएम पार्टी से हैं. शनिवार

अरक को नगरपालिका की एक खास बैठक में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के नियमों के तहत उनको चुना गया। वे गैब्रिएला बातू की जगह ले रहे हैं। जीना पुनुसामी डेप्यूटी मेयर के पद पर बनी रहेंगी, जो रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव पार्टी से हैं। सिटी पापली के रहने वाले लुई आंद्रे टुसें

0: 2012 में भी मेयर रह चुके हैं। इस साल गणेश चतुर्थी मॉरिशस में बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाएगा। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की मांग पर किया गया है। फेडरेशन के मुख्य पुजारी शांताराम राजू ने बताया कि हिंदू पंचांग को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है, जिससे त्योहारों की सही तारीख तय की जाती है। विदेश में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और दूसरे सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफी हद तक तय हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम विवरणों पर चर्चा की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: नंबर 256 होट मिनाजरी काशी में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री प्रीत कुमार बागुबन, श्री प्रीत कुमार बागुबन जिन्हें लोग गोप नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके बेटे लव कुमार बागुबन के मकान नंबर 256 रूट मेनाजरी काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। और रॉयल रोड लाफ्लोरा में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री देवानंद जोकुआ जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोरा से उठाकर मारी जानी रोजबेल किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Quatrième saison des bacs climat peut continuer. Ban participants pour continuer de débattre les questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 30 mai pour la suite compétition Débat climat entre Ben Zélev Collège à partir de 8h30 à soir, l'eau MBCN et MBCSAT.
2: Love Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musty.
2: Love Lounge.

0: मेरी धड़कन हो और मेरी हर धड़कन में तुम्हारा नाम आती है। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं मेरी धड़कन तुमसे बात कर लेती है। मेरी जुबान शायद चुप रहे पर दिल हर पल तुम्हें पुकारता है। तुम पास हो या दूर मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारी आदत में चलती है। इश्क वो नहीं जो सिर्फ आवाज़ों में हो, इश्क तो वो है जो धड़कन बनकर महसूस हो। हर हार्ट बीट में एक ही आवाज़ आती है और वो हो तुम। तुम मेरी कहानी नहीं मेरी धड़कन का हिस्सा हो। दिल की जुबान सिर्फ वही समझता है जो सच में मोहब्बत करता है। तेरा नाम सुनते ही मेरी धड़कन मुस्कुराने लगती है।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Kete, un machine à laver Samsung Top Loading 13 kg 10 18 990 roupies et que te gagne un aspirateur en cadeau? Ça ben brille là et cadeau. Zis si dans la case, ben ma code 3 6 années qui te bougain ça. Eh oui, fin profit ben meilleur offre ben machine à laver Samsung que 3 6 années et que le 3 6 années.mu avec facilité crédit par Sim Finance ou Radius Capital ou même 12 mois zéro l'intérêt quand on paye avec ou code crédit.
4: 3 6 5. Bien plus encore.
1: RM2
2: Radio Musti
1: Love Lounge
2: RM2
5: Radio Musti
1: Love Lounge.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: Right, great music for everyone on Radio Musti for आज का Love Lounge. Celebrating your special date, तो यहाँ पर बिल्कुल हम हाजिर हैं और आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद. Welcoming you 105.9 to 12.94. So कैसा लग रहा है आज का ये collection for Love Lounge? अगर अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि जो आपके दिल की बातें हैं सही ढंग से पहुँच जाएगी, so why not? यहाँ पर हंसनी है and I'm waiting for you until 2 p.m.
4: दिल

0: Alright, let's enjoy weekend. Let's enjoy with the Love Lounge. And abhi time ho chala hai to have some messages. Chalenge Switzerland, welcoming Antish in Mauritius. Aur is samay bhai Anand ke saath having some musty time. Lage raho ji, have a great family day and enjoy weekend with the Love Lounge. And we have it next for Sadhana from Carol Alliance, celebrating her birthday age. Lots of good wishes to you, Sadhana ji. प्यार के साथ एक गाना तो बनता है आपके लिए एंड फॉर एवरीवन लिसनिंग टू अस राइट नाउ चलेंगे बॉम्बू टू वेलकम मनसुख परिवार एंड वी हैव आकाश चेतन जो है फ्रॉम बॉम्बू और ऐसे में उन्होंने अर्ज किया है काजल बनके तेरी आंखों में सामने की तमन्ना है दवा बनके तेरे दर्द मिटाने की तमन्ना है यूँ तो हासिल है जमाने की हर चीज मुझे सिर्फ एक बार तुझे दुल्हन के रूप में पाने की तमन्ना है फॉर समवन स्पेशल आई गेस थैंक यू आकाश जी फॉर शेयरिंग योर मैसेज एंड नेक्स्ट सॉन्ग विल बी फॉर युवंश और प्यारे पापा महन के लिए जो इस समय कनेक्टेड है विद रेडियो एंजॉइंग सम फ्री टाइम एंजॉइंग सम रिलैक्सिंग टाइम एंड हैविंग सम फ्लैशबैक अबाउट लास्ट संडे ओके सो Wish you again a belated happy birthday from all the team and Yuvraj ki taraf se bhi lots of good wishes hai to you. Chaliye is din ko aur bhi special banate hain with our songs jo hum chalane wale hain. Aap logon ke liye up till 2 p.m.
1: Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musti.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: And yes, in Love Lounge, यहाँ पर हो जाए एक लास्ट राउंड ऑफ डेडिकेशंस. प्रणाम जी, सब ठीक है? यस, गोइंग ग्रेट. नीतीश रामदिकल है फ्रॉम मोटा ब्लॉन्श, एंजॉइंग द ब्यूटिफुल शो यहाँ पर लविंग लव लाउंज. सो एक रोमांटिक गाना आपके लिए चल जाएगा, एंड फॉर योर लवली मामा मीला के लिए, एंड पूरे रामदिकल परिवार के लिए भी. वी हैव गॉट अ स्वीट गाना कमिंग अप. इसके बाद चलते हैं सैन फ्रांसिस्को का लुजिन. हेलो माधवी, कैसी हो? लिसनिंग टू द ब्यूटिफुल कलेक्शंस, और साथ में कुछ सिलाई चल रही है. सो बॉन कुराज आपको, एंजॉयिंग द लवली सॉन्ग्स. तो इसी में एक अंतिम गाना जो हम लेकर आएंगे वो आपके लिए ज़रूर चल जाएगा. एंड वी हैव इट नेक्स्ट फॉर बाबू शोना एंड परी के लिए, जो है कनेक्टेड, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम कनाडा. वो तो आई है मॉरिशस. तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो, हर पल बस से तुम्हारा ही ख्याल आता है. तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी है. तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है. मेरे दिल की धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए चलती है. तुमसे बात किए बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है. दिस इज योर मैसेज कमिंग फ्रॉम परी टू बाबू शोना, लिसनिंग टू अस राइट नाउ. चलिए इसी के साथ टाइम फॉर मी टू वेव गुड बाय. थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार हमको पहुंचाने के लिए. अभी 2 बजे सुनेंगे समाचार, और इसके बाद आएगी परी लेकर आज का प्लग एंड प्ले शो. मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी वीकेंड एवरीवन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: And Sabiko, good afternoon. It's your time. It's already 2 p.m. Sunte hai sangshod samachar Pooja ke saath. Aapko namaskar Pooja.
6: नमस्कार हंसिनी सभी को मेरा नमस्कार आज पेंटेकोस्ट पर्व मनाया जा रहा है पोर्ट लुइस डायोसिस द्वारा रोज हिल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया पोर्ट लुइस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जोरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की प्रार्थना सभा दिन के 2:30 बजे निर्धारित है पोर्ट लुइस स्थित अल्फा कॉलेज ने पूरे किए 60 साल छोटे आकार और सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान हर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का स्वागत करता है बिना उनकी क्षमताओं का आंकलन किए यहाँ विशेष ध्यान व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर दिया जाता है प्रत्येक छात्र को सफल होने का एक वास्तविक दूसरा अवसर प्रदान किया जाता है इस प्रगति का प्रमाण ये है कि पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम के कई विद्यार्थी आज अपनी शैक्षिक यात्रा आगे बढ़ा रहा है अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज बुबासे में अफ्रीकन पीपल वॉइस नामक संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान पैन अफ्रीकन

0: उत्पाद और विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज फहराया गया। विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और अन्य सहयोगी देशों के साथ बातचीत के बाद ईरान के साथ एक शांति समझौता काफी हद तक तय करने की बात कही है। ट्रंप के अनुसार औपचारिक घोषणा से पहले समझौते के अंतिम चरणों पर बात की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news

0: Plug and play.
1: RM2
2: Radio Musty.
3: So, well, ladies and gentlemen, it's time for your plug and play, जहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ beautiful songs. अभी के लिए तो हंसनी ने आपको entertain किया उनके कुछ wonderful selections के साथ. And it's now time कि हम आपके लिए कुछ और प्यारे गाने पेश करें. और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So, well, Sunday afternoon को बनाने fun day आपके लिए. मैं हूँ परी आपके साथ. It's your radio मस्ती, जहाँ पर मस्ती 24/7 चलती रहती है. और लाइफ में अगर मस्ती ना हो तो जिंदगी का मजा कैसे आएगा दोस्तों. So, जिंदगी को मस्त बनाइए, जिंदगी को हैप्पी बनाइए. हमेशा जैसे हम कहते हैं, बी सराउंडेड विद पीपल जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं. और क्या पता शायद आप ही वो इंसान है, क्योंकि जब आपके मैसेजेस, आपकी डेडिकेशंस हम तक पहुंचते हैं तो हम तो एकदम हैप्पी, हम तो एकदम खुश हो जाते हैं. सो इशारा तो आप समझ ही गए होंगे. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का रहेगा इंतजार 5499-1294 पर. कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ आपके दिल को बहलाने मैं हूं आपके साथ टिल 4 PM. एंड फॉर नाउ फिल्म तेरे नाम, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की. एंजॉय दिस वन.

0: 92. Radio Musti.
1: Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5 p.m. to 10 p.m. So don't miss out.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: एंड वेल, चलिए यहाँ पर पूनम जी है और पूनम जी कह रही है कि अरे वो गाना तो जरा चला दीजिए. तो बिल्कुल जी, ये तो था हमारे प्लेलिस्ट में और हमने चला दिया आपके नाम एंड एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. वेल फ्रेंड्स, संडे आफ्टरनून है और जैसे हम कहते हैं, इट्स ऑलवेज मैजिकल एंड म्यूजिकल ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ और अगर आप भी साथ दे रहे हैं, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: So well friends, it's time for your plug and play, जहाँ पर best mix of music आपको मिल रहा है, because ये है आपका अपना RM2 Radio Masti Sunday afternoon, और Sunday होता है only to relax, and जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल tension नहीं लेने का, और जो कह सकते हैं आराम के पल है, उन्हें आप enjoy करें. So well friends, आपके messages, आपके dedications भी हम तक पहुँचे हैं 5499-1294 पर, and well यहाँ पर हमारे dearest चाचा महीन हमारा साथ दे रहे हैं from Palma, and the greetings and happiness, best wishes to everyone, wishing everyone a wonderful Sunday and also a fun day. That's so sweet, चाचा महीन, thank you so much for your wonderful wishes. आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए. अभी के लिए good wishes हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं, wishing you a happy Sunday as well and have a wonderful time on the waves of Radio Masti. साथ ही यहाँ पर जाना जी कहती है, मैं भी साथ दे रही हूँ ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक, और आज भाई विष्णु अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना 63rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. सो विशिंग हिम अ हैप्पी वाला बर्थडे, और उनके लिए स्पेशल विशेज ये है फ्रॉम फुल फैमिली, अ ब्यूटिफुल विश ये है फॉर भाई विष्णु, एंड विशेज लेकर आए हैं रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसरण परिवार, एंड स्पेशल विशेज ये है जाना जी की ओर से, जो भेज रही हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार. और चलिए यहाँ पर जो हम गेम खेल रहे हैं, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको पार्टिसिपेट करना है, और आप जीत सकते हैं एक हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल. और इसे जीतने के लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले MBC Play 1.0 डाउनलोड करना है. इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, आप प्ले स्टोर में जाइए, MBC Play 1.0 इसे आपको डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ. जब आप इस

एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आपको एमबीसी ओटीटी से एक मैसेज आएगा और जो मैसेज आपको मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें भेजना है ऑन 5499 1294 हमारा जो नंबर है हमारे रेडियो स्टेशन का, उसके ऊपर आपको हमें ये स्क्रीनशॉट भेजना है ऑन 5499 1294 और जब आप ये मैसेज हम तक पहुँचाएंगे, ये स्क्रीनशॉट हम तक पहुँचेगा, सो हम एवरी डे कुछ जो लिसनर्स हैं हमारे उन्हें हम शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हैं एंड ये सिलेक्ट होंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड और उसके बाद होने वाला है ग्रैंड फिनाले जो होगा ऑन फ्राइडे 29th of May. सो इसके लिए इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जैसे यहाँ पर हमारी एक लिसनर जानना चाहती हैं कि हाउ डू यू डाउनलोड दिस, तो इसको आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है आपको एमबीसी प्ले 1.0. तो ये आई डू होप दैट आई कुड एक्सप्लेन यू थोड़ा अच्छे से और अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको एक रजिस्टर मैसेज मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट हम तक पहुँचा दीजिए 5499 1294 पर. RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo. RM2
2: Radio Musty.
3: Radio Musty
2: in the mix.
3: Radio Musty feels a musty
2: in the mix.
4: तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. वैसे लोग कहते हैं ना कि यू लिव जस्ट वंस, एक्चुअली ये बात तो गलत है, बिकॉज वी लिव ईच एंड एवरी डे. हर दिन आपको मिलते हैं इतने सारे नए घंटे, यानी कि 24 फ्रेश आवर्स, जिसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ अच्छा सोच सकते हैं. और कहते हैं ना कि जो आपकी लाइफ की डायरी है उसमें क्या लिखना है वो तो आप ही के हाथ में है. सो वाई नॉट राइट कुछ ऐसा जो हमेशा पढ़ने पर आपको लगे कि वाह जिंदगी गर जी. तो बिल्कुल इसी तरह जी. सभी के लिए हम तो बस आपके लिए बहुत सारा प्यार लेकर आए हैं, प्यार ही प्यार बेशुमार, राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, लौट कर आएंगे कुछ और ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ. अभी के लिए अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह, एंजॉय दिस वन.
5: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है. बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके. अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में कल 25 मई के समारोह से पहले आज बुबासे में अफ्रीकन पीपल वॉइस नामक संगठन की पहल पर एक प्रतीकात्मक समारोह का आयोजन किया गया. मॉरिशस में पहली बार अफ्रीकी पहचान, पैन अफ्रीकनवाद और विश्व में अफ्रीका की भूमिका को समर्पित कार्यक्रम के दौरान अफ्रीकी संघ का ध्वज लहराया गया. आज पेंट कोस्ट का पर्व मनाया जा रहा है. पोर्टलिस डायोसिस द्वारा रोजहिल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया. पोर्टलिस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की और एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया. पोर्टलिस स्थित अल्फा कॉलेज ने पूरे किए 60 साल. सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान हर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का स्वागत करता है बिना उनकी क्षमताओं का आंकलन किए. यहाँ विशेष ध्यान व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर दिया जाता है. प्रत्येक छात्र को सफल होने का एक दूसरा अवसर प्रदान किया जाता है. इस प्रगति का प्रमाण ये है कि पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम के कई विद्यार्थी आज अपनी शैक्षिक यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं. विदेश में 2 मई से शुरू हुए कैन फिल्म फेस्टिवल का शनिवार देर रात समापन हुआ. 2026 का कैंस फिल्म महोत्सव का समापन

प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा के साथ हुआ। समापन समारोह में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई निदेशक पार्क चान वूक की अध्यक्षता में मुख्य पुरस्कारों के निर्णायक मंडल ने सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की। महोत्सव का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार

0: एंड्रू की फिल्म मिनातो को दिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। वन शक्ति माता मंदिर वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबिलिया में 77 साल की 77 years old श्रीमती देवंती देवलोल पैदाशी नाम पूरन और जिन्हें लोग माता जी देवी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके पति बिसुंदियाल देवलोल के मकान वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबिलिया से उठाकर पिचिबिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। गंगा दुलेन अपवेल में 47 साल के 47 years old श्रीमती अलविना गंगादू पैदाशी नाम अपादू और जिन्हें लोग अलविना नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके पति सुबी गंगादू के मकान गंगादू लेन अपवेल से उठाकर बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9:30 AM। लाटापी रोड बोनाकोय में 60 साल के 60 years old श्री सूरजानंद घुमारिया जिन्हें लोग सूरज नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी सुनीता घुमारिया के मकान लातापी रोड बोनाकोय से उठाकर लातापी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। और रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 years old श्री बसंत तायब जिन्हें लोग मोती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके बेटे सत्यन तायब के मकान रामा रोड शामुनी से उठाकर कांगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Plug and play.
2: RM2.
3: Radio Musty.
1: Plug and play.

0: back and play.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, लाइफ की सिचुएशंस भी ऐसी ही है, कभी कभार अपनी मर्जी से प्लग इन कर लेती है, कभी अपने आप को प्ले कर लेती है, लेकिन हम भी तो है धुरंधर, जहां पर जो भी सिचुएशंस आए हम भी अपने आप को उसमें से निकाल ही लेते हैं, और तभी तो हम कहते हैं कि आपसे बड़ा वॉरियर और कोई है नहीं। सो खुद भी अपने आप की तारीफ कीजिए, खुद भी अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो पता नहीं कब वक्त निकल जाए, लेकिन खुद की तारीफ तो आप कर ही सकते हैं। एंड इट्स ऑलवेज दैट, वो जो मोटिवेशन होता है वो पहले सबसे पहले खुद के अंदर से आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो हम हैं आपके साथ, आपके इस संडे को एकदम मस्त बनाने के लिए। मूड अच्छा है, वेरी गुड। मूड थोड़ा सा ऑफ है, इसको हम एकदम सेट कर देंगे, क्योंकि जैसे हम कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन डरने का नहीं, ओनली मुस्कुराने का, खुश रहने का और लाइफ में पॉजिटिविटी को शेयर करते रहने का। सो अभी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं हूं परी आपके साथ, और साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप अभी दत्त की आवाज, और इसे हम डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम। संडे आफ्टरनून का मूड थोड़ा सा ऐसा ही होता है, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा चिलैक्स, एंड ऑफ कोर्स बहुत रोमांटिक।

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: So well, beautiful songs लेकर आए हैं आपके लिए जीले जीले जीले इश्क में. ये फिल्म तो आपको याद ही होगी, यू मी और हम. ये फिल्म का ये गाना था और ये गाना था आप सभी के नाम, जहां पर हमने देखी ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ अजय देवगन एंड काजोल. रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक वह क्या लव स्टोरी चली, जहां पर अब तो दो प्राउड मतलब प्राउड पेरेंट्स बन चुके हैं और दो प्यारे बच्चे भी हैं जो अब काफी बड़े हो चुके हैं. और खबरें तो ये भी आ रही थी कि उनकी बेटी बहुत ही जल्द फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है. लेट्स वेट एंड वॉच. चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम. यहाँ पर ललिता जी अभी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं सी साइड पहुंच चुकी हूँ लेकिन अभी भी गानों को एंजॉय कर रही हूँ. सो वेल, गाना आपके नाम इक्वली गोज आउट फॉर कुमार देवीचंद. आगे पीछे मैसेजेस आ ही जाते हैं आपके और ललिता जी के. सो वेल, आपके नाम और फॉर डैड श्याम देवीचंद, उनके लिए भी प्यार एंड स्पेशल विशेस. साथ ही साथ कहते हैं इट्स अ हेक्टिक हेक्टिक वीकेंड, अभी अपना लंच एंजॉय कर हैं और साथ में प्यारे गाने भी. और चलिए, गानों को एंजॉय करने के लिए शुक्रिया. ये जो ब्यूटीफुल ट्रैक है और आने वाले जो ब्यूटीफुल ट्रैक्स है वो सब आपके नाम. रोशनी जी साथ दे रही हैं आप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम, लोड्स ऑफ लव टू यू. दिस वन गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मस्ती.

0: 92
1: रेडियो मस्ती मैं जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC Pi विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025 Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: And play
1: RM2
2: Radio Musti.
3: So well, ladies and gentlemen, Jubin Nautiyal, miss mat kijiye unka concert. Bhai, unki soulful awaaz, romantic hits and heart-touching melodies. Inhe to hum sunna chahte hain aur mauka to rarely milta hai jab hum unhe live perform karte hue dekh paaye. Lekin ye mauka aapko mil raha hai on 30th of May, jahan par aap unke concert ka hissa ban sakte hain. सो ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये खास मौका जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं जुबिन नौटियाल के वंडरफुल सॉन्ग्स और उनके कुछ गाने इतने पॉपुलर रहे बी इट बर्बाद द यस द लेटेस्ट हिट फ्रॉम द फिल्म सैयारा या फिर राता लंबिया या फिर उनका जो गाना लुट गए हम तेरी मोहब्बत में ये सारे गाने वेरी पॉपुलर रहे उनके और स्पेशली उनके जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें ऑडियंस हमेशा मेस्मराइज हो जाती है उनके परफॉर्मेंस के साथ उनकी आवाज़ को सुनकर सभी के लिए तो ये मौका आपको मिल रहा है सो नोट द डेट 30th ऑफ मे लाइव कॉन्सर्ट जुबिन नौटियाल एट SVICC पाई अभी के लिए जो अगला गाना है गोज आउट उनके सभी फैंस के नाम एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती एंजॉय दिस वन

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: And well, friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate ye gana Ritesh, Shama, Rani, Tanish, Adarsh, Saath mein hai Nishtha, Jayashree, Shakil, Yushra, Vashish, Yashna and all Jeevan family. Well, aise humara saath de rahe hain. So this one goes out for you. Aur saath hi saath, is waqt humare saath connected hai, humare ek aur listener. So thank you so much for this wonderful message. Humare saath judne ke liye shukriya. And you are enjoying the song, so isse aap dedicate karna chahte hain for everyone. Aap hai Mr. Kishan Ram Bharose, Chitrakoot aur Walid प्रेत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप और यहाँ पर जितने भी रेडियो लिसनर्स हैं उनके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग. सो वेल फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मेरे बाद आ रहे हैं संजय लेकर कुछ और प्यारे गाने आपके नाम. कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड एंड एंजॉय दिस वन.

0: RM2.
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। समाचार अभी के साथ नमस्कार।
4: नमस्कार संजय। श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाते हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने की दिशा में एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। आज पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जा रहा है। पोर्टवी गिरजाघर द्वारा रोसेल स्थित सेंट मेरीज कॉलेज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था। पोर्टवी के बिशप मोंसिनियर जॉन मिकाएल जुरोन ने इस समारोह के महत्व पर बात की। आपको बता दें कि आज दोपहर के 2:30 बजे तक प्रार्थना सभा लगाई गई। आज शाम से हज की बकायदा शुरुआत होगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हज मक्के से मीना की तरफ जाएंगे। इस शहर से हज के मराहिल शुरू होंगे। सबसे अहम दिन मंगलवार को यौमेन अराफात होगा, जहां हाजी को ए अफ अराफात पर जमा होकर इबादत और दुआओं में अपना दिन गुजारेंगे। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। उधर कैलिफोर्निया में एक केमिकल फैक्ट्री के खराब वाल्व ने लाखों जिंदगियों और 6 शहरों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। ऑरेंज काउंटी की इस फैक्ट्री से मिथाइल मेटाक्राइलेट नाम के बेहद खतरनाक और आग पकड़ने वाले केमिकल का रिसाव हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर होते हुए प्रशासन ने बिना वक्त गवाए लगभग 40,000 लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। वन शक्ति माता स्ट्रीट पिचिबिलिया में 77 साल की 77 years old की

0: इनके एक बजे कल दिन के एक बजे उनके पति श्री बिस्विन दयाल देवलल के घर वन शक्ति माता मंदिर वन शक्ति स्ट्रीट पिचिबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचिबेलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड एक्वायो में, रॉयल रोड एक्वायो में 67 साल के 67 years old के श्री दयादत्त राजवंती, श्री दयादत्त राजवंती जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के घर रॉयल रोड एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot des tickets de Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini de recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
2: Music, Dr. Gutter.
3: RM2, Radio Musty.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आपके ख्वाबों में, आपके इरादों में, आपके ख्यालों में हम थे ना। So happy am I to be having your company on the frequencies of your favorite radio station, Radio Masti. आपकी संडे शाम संजय के साथ इन टिक टकाटक। And we're going to start with a game. Yes, play and win 500 rupees voucher offered to you by Riva Excellence at Riva Excellence at Center Point Triano this Mother's Day. And don't miss the Champions League final live at Center Point Triano. Big screen, big vibes, wonderful ambiance. You're gonna remember it your whole lifetime. तो ये जीतने के लिए आपको बस हमारे इस अगले सवाल का जवाब देना है by sending me a message on 5499294. बस एक ख्याल रखें, if you've already won, अभी हाल में on Radio Masti, please give others a chance to win. So हमारा फोन नंबर वही है 5499294. आज की तारीख 24 मई और 24 मई 1953 को जन्मे एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने 1975 से लेकर अभी हाल तक बहुत से हिट गाने हमें दिए हैं, आप हमें बताएं। सो हिज ब्रदर हैज बीन एन एक्टर डायरेक्टर, उनके उनका भतीजा भी अभी तक फिल्मों में बहुत नाम कमाया है। सो हमें उनका नाम बताएं जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में बेशुमार नाम कमाया है और जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को जिन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही डायमंड डायनामिकली यानी कि बहुत सारे सही जवाब आए। लेकिन जैसे कि हमने बताया, इफ यू रिसेंटली वॉन इन आवर गेम्स स्केड्यूल ऑन रेडियो मस्ती, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले और जिनका नाम हमारे लिस्ट में नहीं है, जिन्होंने सही जवाब दिया, और सही जवाब है राजेश रोशन साहब। टुडे राजेश रोशन जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं एंड हिज करियर शॉट टू फेम जब उन्होंने फिल्म जूली का संगीत दिया, दैट वाज बैक इन 1975। और उसके बाद एक एक करके उन्होंने हिट सुपर हिट गानों के लिए संगीत दिया। एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर दूसरा आदमी स्वामी, ये है जिंदगी एक ही रास्ता, स्वर्ग नरक इनकार खट्टा मीठा, बातों बातों में कामचोर हमारी बहु अलका, एंड सो मेनी फिल्म्स ऑफ राजेश खन्ना जिसमें उन्होंने संगीत दिया, हवलदार, निशान, बाबू, आखिर क्यों, करण, अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, पप्पा कहते हैं, कोयला, डार्क द फायर, दस्तक, क्या कहना, कहो कहो न प्यार है। सो जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया और जिनके नाम जाता है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड बाय रिवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट ट्रियानों फॉर दिस मदर्स डे, वे हैं सेंट्रल फ्लैग के रहने वाले उमेश बंजन जी। बधाई उमेश जी, आपको बहुत जल्द पोस्ट के जरिए मिलने वाला है आपका गिफ्ट वाउचर। जितने भी लोगों ने भाग लिया, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। मे बी नेक्स्ट टाइम।

0: उसके उपरांत द ब्यूटिफुल सोलफुल जुबीन नौटियाल, जिनको आप लाइव देख पाएंगे, सुन पाएंगे नेक्स्ट सैटरडे इन हेज कॉन्सर्ट।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
3: मैं ना रहा।
2: जुबिन नौटियाल live in Mauritius on Saturday 30th of May at SVICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
1: RM2
2: Radio Musti.
4: Music, tuck-tuck-tuck.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: रियली रेडी सो हैप्पी एम आई टू बी हैविंग योर कंपनी। आज कुछ अलग ही है, मस्ती कुछ अलग ही है, माहौल कुछ अलग ही बना हुआ है। एंड टाइम टू प्ले अगेन, यस, प्ले विद रेडियो मस्ती एंड MBC एंड विन 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर ऑफर्ड बाय रिवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट एट ट्रियानो दिस मदर्स डे। And do not miss the Champions League final live at Centre Point Trianon. Big screen, big vibes, big ambiance. It's going to be memorable. So, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को शुरुआत से ध्यान से सुन रहे हैं, then हमने इस सवाल का जवाब आपको दे दिया है। आपको बस बताना है हमें किस फिल्म के लिए राजेश रोशन को पहली बार के लिए

फीडबैक की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला था। सो इजी। एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं कि इफ यू जस्ट वॉन ऑन रेडियो मस्ती, प्लीज अब अन्य लोगों को मौका दें, अन्य लोगों को मौका दें। टेल मी किस फिल्म के लिए राजेश रोशन को फिल्मफेयर की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड हासिल हुआ था। आपका जवाब ऑन 5499294। क्विक टू योर फोन और हमें जवाब दीजिए एंड विन द 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय रिवा एक्सीलेंस।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बहुत ही फिटिंग गाना अगर आप सोच रहे हैं इस समय टू गो आउटसाइड एंड हैव अ वॉक टू हैव योर संडे आफ्टरनून वॉक इन नेचर, कितना अच्छा होगा ना। सो कुछ समय पहले हमने आपसे एक सवाल किया था, किस फिल्म के लिए राजेश रोशन, जिनका आज जन्मदिन है, उनको फिल्मफेयर की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड हासिल हुआ था। दैट वाज बैक इन 1975 और फिल्म थी जूली। जूली से पहले उनकी फिल्म आई थी कुंवारा बाप, जो काफ़ी चली थी, लेकिन जिस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर की ओर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड हासिल हुआ था, दैट वाज जूली। और जूली जवाब बहुत से लोगों ने हमें दिया, लेकिन जिन्होंने हमें सबसे पहले सही जवाब दिया वे हैं बसे रोड कैटरबोन की रहने वाली पेशिका मड़ुआ जी। आपको बधाई हो, आपको हासिल होता है रीवा एक्सीलेंस की ओर से 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर विच विल बी पोस्टेड टू यू, और जिसको लेकर आप जा सकते हैं संडे पोंट ट्रियानो ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे, और जहां पर आप देख पाएंगे द चैंपियंस लीग फाइनल।
3: माय हार्ट

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: एंड टाइम टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू निधि. बेस्ट विशेज आ रहे हैं फियांसे गर्विश, मॉम सुनीता, ब्रो नक्श, नेहा, अखिलेश, लिटिल नीस विदाक्षी और पूरे रामबर्णन फैमिली की ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू निधि. शलीहा मोहित फ्रॉम सुरीनाम, आपको हमारा सलाम. और जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशनी जी फ्रॉम कैटरबोन, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज. और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, दिस नेक्स्ट सॉन्ग वाज फॉर यू स्पेशली एंड आई एम श्योर यू ऑल गोइंग टू लव इट. ढलती शाम का नजारा कितना सुहाना लगता है, ढलती शाम का नजारा कितना सुहाना लगता है, तेरी यादों का रंग इसमें कितना

0: Welcome to Radio Musti.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।
3: रोमांटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना फॉर ए ब्यूटीफुल आफ्टरनून, जाता है मान की ओर से वाइफ हेमा।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: लव इज डेफिनेटली इन देयर. थैंक यू फॉर योर न्यूमरस मैसेजेस. यलेश श्याम जी सुखी नाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. निशाद जी अपनी सासू माँ माला जी के लिए अगले गाने की फरमाइश कह रही हैं कि सासू माँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरी फैमिली के लिए वो रोटी बना रही हैं. वाव सासू माँ जी, आपकी रोटियों की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है. वाव. ललिता जीतन जी आपको हमारा सलाम. जयराज बुलाकी जी शुक्रिया आपके मैसेज के. नाशरीन थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कोट्स फ्रॉम रूमी. महाराज जी को हम बोकुराज विश करते हैं, वो जो निकल पड़ी हैं अपने इवनिंग वॉक के लिए. सिमी जी रोजिल से गानों का आनंद ले रही हैं और देवीना मधु जी फ्लक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. प्रिया जी न्यूगोव से हमेशा की तरह कनेक्टेड वेव रेडियो मसी. उनकी ओर से हबी विशाल, बेटी श्रेया, बेटी नील और पापा सतीश के.

ये नेक्स्ट सॉन्ग एंड आल्सो ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू लिटिल रियांश जो आज एक साल के हो रहे हैं फ्रॉम द होल प्रयाग फैमिली ऑफ रोड्रिग्स एंड इक्वली फ्रॉम द पाटू फैमिली ऑफ ओश्नोआ.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: म्यूजिक
2: रेडियो मस्ती।
3: थैंक्स टू ऑल दोस जो सप्ताह के दौरान हमें हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं दैट दे रियली लव दिस टिप्स स्पेशली कमिंग फ्रॉम मी। सो आफ्टर ऑल द फॉर्मूली दैट दे गेव द लास्ट टू संडेज टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट टू एस्पेक्ट्स टू टिप्स। फर्स्ट वन इज गो अप अ साइज। इफ यू हैवंट नोटिस्ड ओवरसाइज्ड इज द न्यू कूल सिलुएट। Slouchy and baggy is the way to go. You want a cut that is big and roomy, which means it looks effortless. Wo zamana gaya jab sab kuch straight tha, sab kuch closely fitting tha. Today it is the roomy type. It feels easy. What's not to love about being comfortable? But sometimes when you're trying something new on, you look in the mirror and you're not that sure. So your tip hai, go up one size. Jeans looking daggy, get a size bigger. They sit slower,

0: यूजली लॉन्गर इन लेंथ टू और यही बात चलता है स्कर्ट्स के साथ द ब्लेजर दैट फील्स टू टाइट एंड नीट गो अप वन साइज इसके अलावा व्हाइट शूज एड व्हाइट शूज सफेद जूते White shoes are an instant wardrobe updater. अगर आपके पास एक साल, दो साल या तीन साल पुरानी जीन्स हैं या स्कर्ट हैं, try them on again, but this time add a white shoe, a pair of white shoes on it, and immediately you look fashiony, you look chic, and you look edgy. Tell me during the week how you feel about these tips.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Music, Tak Tak Tak.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: It's a real pleasure to be reading your messages. बहुत बहुत शुक्रिया that you're enjoying the selection. हबी नितीश, बेबी निवांश, अदिति, दानिश और मंगो फैमिली को हम करते हैं सलाम. अनीता जी फिकॉन्फ्लॉक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आपकी पूरी फैमिली को हम करते हैं नमन. प्रवेश की ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर वाइफ पेशिका. और सुरेखा जी जो कैथ कुको से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. आपकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर द रामधन फैमिली. बहुत से लोग नेक्स्ट वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग मदर्स डे का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग जुबिन के कॉन्सर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

कोई और गाना गाए ना गाए बट ऑन द 30th ऑफ मे ऑन द ईव ऑफ मदर्स डे हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये गाना जुबीन जी की आवाज़ में सबों को रुला देगा सच ए टचिंग सॉन्ग और बस इसी के लिए जाना पड़ेगा जस्ट टू लिव दैट मोमेंट ऑफ सब्लाइम ब्लिस चलिए हम आप पहुंचे हैं हमारे सेकंड आवर के अंत तक थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार और सब समाचारों के बाद आई बी बैक विद मोर ऑफ सोलफुल म्यूजिक ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: रविवार 24 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खुलने जा रहा है। अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजांस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन कल यानी कि सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ये अभियान इस साल नवंबर के अंत तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। और विदेश स्तर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें 24 लोगों की हो गई है मौत और 100 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस और अफ्रीका के बीच एक नया हवाई रास्ता खोलने जा रहा है, अफ्रीकी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस जल्द ही मॉरिशस के प्लेजांस हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी। ये नई कनेक्टिविटी जुलाई 2026 में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के ठीक बाद शुरू होने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। ये सीधी उड़ान से मॉरिशस के लिए व्यापार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नए और बड़े अवसर खोलेंगे। इस घोषणा को लेकर आम यात्रियों के साथ साथ इथियोपिया और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रह रहे मॉरिशस के प्रवासियों के बीच काफी उत्सुकता और खुशी का माहौल है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने एक नए नेशनल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है, जिसे भारी बारिश के दौरान लागू किया जाएगा। जैसे ही भारी बारिश की चेतावनी जारी होगी, निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कर्मचारी पहले से काम पर हैं और चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वे तुरंत अपने घर जा सकेंगे। अब तक सिर्फ मौसम विभाग की चेतावनी काफी नहीं थी, नियोक्ताओं को संकट समिति के आदेश का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और यूनियन लीड्स का मानना है कि ये निर्णय एक पुरानी नाइंसाफी को दूर करता है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिल्वाना पागीमामन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
6: हर गर्मी के मौसम में इस पर चर्चा होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारी मूसलाधार बारिश होने पर घर जा सकते हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार करना होता है, जो कभी कभी बहुत बाद में प्रकाशित की जाती है।
7: Quand ma machine vient près au roule, elle est là où trouve-t-elle.
8: Comme moi, on travaille l'utile, c'est dans ce qu'on de les passer.

0: nous, nous restons là-bas. Toujours. Fait que sur la nuit, nous inquiétons nos familles. C'était la case que nous qui peut arriver.
1: निजी सेक्टर और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति कायम की गई है। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय किया गया है। मूसलाधार वर्षा होने पर निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना होगा या फिर काम करते नहीं रहना होगा। इस तरह मालिक वर्ग को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना होगा। रियाज चतुर ने कहा,
2: ça fait plusieurs années qu'ils nous demandent ça.

0: मूसलाधार बारिश होने पर घर जाने का अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज एक अन्याय को सुधारा गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बहुत बधाई है कि ऐसा हो पाया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए काम होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए। ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, परिवहन आदि को लेकर भी। ये प्रोटोकॉल उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। मंत्री रेजा उतीम ने कहा, पहले तो वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स राइट्स एक्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर को अपने कर्मचारियों को लौटाना चाहिए नेशनल क्राइसिस कमेटी के आदेश पर। अब इसमें बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी काम पर न जाएं। अगर काम पर हों तो उन्हें घर लौटाना चाहिए। सुधारों के साथ केवल आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को काम पर जाना ही होगा मूसलाधार बारिश होने पर। नेशनल क्राइसिस कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के बाद ही फिर से काम बरकरार रखा जा सकता है, ये कहते हुए कि निकलना सुरक्षित है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कर्मचारियों को काम पर जाना होगा या फिर मौसम की बहुत खराब स्थिति में काम पर रहना होगा। सेवा प्रदान करने वाले हर एक संगठन को एक अंदरूनी प्रोटोकॉल तैयार करना होगा और बरकरार भी रखना होगा। साथ में एक निश्चित आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक नर्सरीज और शिक्षा संस्थाओं की बात है तो कुछ भी नहीं बदला है, अलग अलग संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर होगा। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाए जाने चाहिए। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट में भी सुधार लाए जाएंगे। क्राइसिस समिति के कार्य बढ़ाए जाएंगे और श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
1: अब बात करते हैं ऊर्जा की खपत के बारे में। जी हाँ, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन यानी कि कल सोमवार 25 मई 2026 से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह अभियान इस साल नवंबर के अंत तक चलेगा। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की एक संयुक्त पहल है। हालांकि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में बिजली की मांग लगभग 200 मेगावाट कम हो जाती है, फिर भी लोगों को जागरूकता करना बहुत ही आवश्यक है। इसकी मुख्य वजह मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के कारण भारी तेल की आपूर्ति में आ रही बाधाएं हैं। टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर विशेष विज्ञापन चलाए जाएंगे ताकि लोग बिजली बचाने के आसान तरीके सीख सकें। कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े सुपरमार्केट्स और शोरूम्स में जागरूकता स्टॉल लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को अपने दैनिक बिजली खर्च पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर और नई तरीकों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी ताकि काम के माहौल में भी ऊर्जा की बचत की जा सके। रिया रामभुजन की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
0: अक्सर सर्दी का मौसम आता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है।
2: Les diminuer d'une certaine façon, par exemple, nous passer avec climatisation et les réserves, il y a presque normal de regarder de plus devant si nous belles diminuer.
3: Normalement, les passants moins sont ces moments d'hiver. Côté la poutine, nous, t'aimes bien l'appareil.
4: Vers situation sous contrôle, zone réserve.
0: Central Electricity Board qui aussi, pichelé garmi ke mausam mein, urja bachat par dhyan kendrit, sardi ke mausam mein bhi urja bachane se sambandhe jagruta abhiyan par karar rakha ja raha hai. Urja mantri Patrick Asiawaten ne kaha.
5: Nous envie de montrer, le Mauricien en général,
0: हम मॉरिशियनों को बताना चाहते हैं कि न केवल गर्मी के मौसम में समस्या है, सर्दी के मौसम में भी समस्या उतनी ही गंभीर।

0: गंभीर है, जिस तरह गर्मी के मौसम में इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है। अगर छोटी छोटी हरकत या कुछ कदमों से बचत की जा सकती है तो निसंदेह बिल कम होगा और सीबी भी कम कच्चा तेल मंगवाएगा। बिजली उत्पादन के लिए देश के लिए हैवी फ्यूल का दाम भी कम होगा। तापमान के घटने से चाहे बिजली की मांगे कम हुई हो, फिर भी लोगों को जागरूक कराना अहम है। अतः ये अभियान कैसे चलाया जा रहा है, जानने की कोशिश की गई। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया, ये अभियान स्कूल से शुरू होता है। हमारी टीमें स्कूल में जाएंगी, मॉल्स में भी जा रही है, लोगों से भी मुलाकात करेगी। स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सहायता देंगे। इमो, सीबी, मावेना, ऊर्जा मंत्रालय सहायता करेंगे ताकि बिजली जाया न हो। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई बिजली उत्पादन इंजनों का रखरखाव किया जाएगा। अधिक जिम्मेदाराना उपभोग की ज्यादा जरूरत होगी। यह अभियान 6 महीनों तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से उन्हें नागरिकों के सहयोग से भारी उम्मीदें हैं। इसकी बदौलत सीबी पिछले गर्मी के मौसम की मांग पर 15 मेगावाट तक बचत कर सका है।
1: एस एस ओरेन अस्पताल में 21 वर्ष की एक युवा महिला की मौत के बाद विभाग द्वारा एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। मृतक महिला 23 सप्ताह की गर्भवती थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला को बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था, जहां उसे भारी ब्लीडिंग और गर्भाशय सर्विक्स के फैलने की समस्या थी। डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे एक ऑपरेशन व इलाज के दौरान महिला की स्थिति अचानक और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक सैंपिया की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वह गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली नियमित डॉक्टरी जांच या प्रसव पूर्व देखभाल नहीं ले रही थी। पीरियड्स से जुड़े संकोच को दूर करने, युवा लड़कियों को जागरूक करने और महिलाओं के शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक खास पहल की गई है। रेकोनेक्शन प्लेटफॉर्म लाकाज बाबा की पहल का दूसरा संस्करण इस हफ्ते आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय महिलाओं का मासिक चक्र था। ये जागरूकता अभियान रोजेल के प्लाजा में आयोजित किया गया था। कला, बातचीत और चर्चाओं के जरिए इस विषय पर बिना किसी संकोच या शर्म के खुलकर बात की गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रीमियर लून नामक फिल्म भी दिखाई गई, ताकि लोग इस विषय को और संवेदनशीलता से समझ सकें। पूजा सुकालू।
2: महिला शरीर की सुंदरता को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ एक विषय के रूप में महिलाओं का मासिक पीरियड, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात करने से हिचकिचाती है। ऑड्री की ये प्रदर्शनी ऐसे विषय पर बात करती है जिसे अब धीरे धीरे अधिक आसानी से चर्चा में लाया जा रहा है। ऑड्री नानकू कहती है, पहले की तुलना में आज की पीढ़ी इस पर आसानी से आराम से बात करती है। मेरे परिवार में हम इस विषय पर खुलकर बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग दादा दादी के लिए ये थोड़ी अजीब है, क्योंकि पहले के जमाने में ये बात घर के बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ महिलाओं के बीच रहती थी। कॉलेज में भी हम सब लड़कियाँ एक ही नाव पर जाती हैं, तो ये एक आम बात होती है हमारे लिए। अपने शरीर को समझना जरूरी है, विशेष रूप से युवाओं के लिए। एलिसा सेसिल कहती है, नेट पर सब कुछ ढूंढा जा सकता है, पर सब में सच्चाई नहीं होती, इसलिए इस विषय पर चेतना अभियानों का आयोजन एक अच्छी बात है। हार्मोनल समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, हम स्वस्थ हैं या नहीं ये जानना जरूरी है। इस ताबू को तोड़ने के लिए लाकाज बाबा की पहल पर रिकोनेक्शन नामक प्लेटफॉर्म ने एक जागरूकता अभियान आयोजित किया। एक सप्ताह के दौरान युवाओं और बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया, जिसके जरिए महिलाओं के इस विषय को बेहतर ढंग से समझा जा सका। नाताली फिलोजेन कहती है, जब 9, 10 या 11 साल की एक लड़की

0: को पहली बार उसका मेंस होता है, वो कैसे इसका सामना करती है, वो अपने माता पिता से इस बारे में खुलकर बात कैसे करती है, स्कूल में सहेलियों के बीच क्या बातचीत हो रही है, शरीर में परिवर्तन आने पर फिर भी वो एक लड़की ही है, महिला नहीं, उसको अपने पास ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसे सही और उचित जानकारी दे सके.
1: Culture, mais aussi ce côté médical, ce côté qui concerne l'écho même.
0: Au sol par upasthit logon ne Melanie Melo ki première lune film ki screening bhi dekhi. Is pehel ka uddeshya khule baatcheet karna aur ek adhik swatantra aur jagruk drishtikon ko barhava dena raha.
2: ईसाई गिरजाघर में आज रविवार को पेंटेकोस्ट का त्यौहार मनाया गया. ईसाई कैलेंडर का ये एक प्रमुख त्यौहार है जो ईसा मसीह के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के आगमन की याद में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र आत्मा का ये आगमन आग की लपटों के प्रतीक के रूप में हुआ था. इस अवसर पर पोर्टलुई के बिशप मोंसेन्यूअर जॉन मिकाएल जुरन के संचालन में एक विशेष प्रार्थना सत्र लगाया गया. आज शाम से हज की बकायदा शुरुआत हो रही है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हाजी मक्के से मीना की तरफ जाएंगे. इस शहर से हज के मराहिल शुरू होंगे. सबसे अहम दिन मंगलवार को योम अराफात होगा, जहां हाजी को ए अराफात पर जमा होकर इबादत और दुआओं में अपना दिन गुजारेंगे. मॉरिशस रोड्रिक्स में इस क्विंट से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों के सफल ऑपरेशन किए गए हैं. भारत से आई एक विशेष मेडिकल टीम जिसका नेतृत्व डॉक्टर मिलिंडा किलेडर कर रहे थे, उन्होंने पिछले अप्रैल महीने के दौरे के दौरान ये सर्जरी की. ये पहल रोटरी क्लब बागातेल और भारत के रोटरी क्लब पोंडिशेरी अगारम की साझा कोशिशों का नतीजा है. ये नेक काम लगातार अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और इस साल इस मुहिम को स्क्विंट आई 4.0 नाम दिया गया, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था. पोतलुई में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपनी स्थापना के 60 साल पूरा कर चुके हैं और आकार में छोटा होने और छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद ये स्कूल बिना किसी भेदभाव या उनकी योग्यताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के बच्चों का स्वागत किया जाता है. वहां पर यहां हर एक छात्र की जरूरतों को समझा जाता है और उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है. ये संस्थान उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जिन्हें पढ़ाई में पीछे छूट जाने के बाद जीवन में आगे बढ़ने का एक सच्चा और दूसरा मौका होना चाहिए. इस स्कूल की बेहतरीन कोशिशों का असर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है. इसके एक्सटेंडेड प्रोग्राम पढ़ाई के में कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष जो कोर्स है, वहाँ के कई पूर्व छात्र आज न सिर्फ सफल हुए हैं बल्कि अपनी आगे की उच्च शिक्षा को भी शानदार तरीके से जारी रख रही है. पूजा सुकालू की रिपोर्ट.
0: जब कोई यहाँ पोटली समय पुद्रिया गली से गुजरता है तो शायद ही अल्फा कॉलेज आकर्षक ना लगे या ना दिखे, लेकिन इन दीवारों के पीछे एक अलग ही वास्तविकता है. यहाँ कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्र धीरे धीरे अपने आप में एक आत्मविश्वास पा लेते हैं क्योंकि उन्हें उनकी गति के अनुसार उपयुक्त सहायता दी जाती है. इनमें से कुछ छात्र पूर्व एक्सटेंडेड प्रोग्राम में शामिल थे, आज वे अपनी शैक्षिक यात्रा में अधिक आत्मविश्वास और बेहतर संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे
3: हैं.
0: तायब सैफ अली कहता है, मुझे छठी कक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हुआ, तब मैं यहाँ अल्फा कॉलेज में एक्सटेंडेड प्रोग्राम में प्रीवोक में शामिल हुआ. यहाँ पर मुझे हौसला मिला आगे बढ़ने के लिए. मेरे अकाउंटिंग अध्यापक की मदद से मुझे इस विषय में एक मिला और मैथमेटिक्स में मैं पूरे मॉरिशस में तीसरे स्थान पर आया हूँ।

0: निजल फाबिया कहता है, फेल होने के बाद मैंने अपने आप में विश्वास ही खो दिया था। सब कॉलेज ने अपना द्वार ही बंद कर दिया। यहाँ अल्फा कॉलेज में मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला सफलता की ओर जाने के लिए। अभिभावकों ने भी ये बदलाव महसूस किया है। वे इस मार्गदर्शन और नियमित फॉलोअप की सराहना करते हैं।
1: ici à collège alpha mon professeur aime bien travailler avec les jeunes encourage dit
0: नासरा भोला कहती है, मेरे बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन बहुत किया गया, वो अपना एनसी कर पाया है इसी मदद से। प्रेजिन आपादू कहती है, मेरे दो बेटे को यहाँ भेजकर मैं पछता नहीं रही हूँ। आज वे सफल हो पाए हैं, अनुशासन की राह पर चलकर वे जीत पाए हैं। इस प्रगति के केंद्र में है एक ऐसी शिक्षण पद्धति जो छात्र केंद्रित है, जहाँ हर कठिनाई को ध्यान में रखा जाता है। रीना नंकू कहती है, यहाँ पर हम परिवार की तरह रहते हैं। सभी नोट्स एकदम सरल होती है। बच्चों की तरक्की के लिए हम धीरे धीरे उनकी मदद करते
2: हैं।
3: Ils ont été traités comme étant inférieurs, incapables de pouvoir.
0: Gulen Bose कहती है, हम बच्चों को समझाते हैं कि वे लोग बाकी बच्चों की तरह ही हैं, अलग महसूस होने नहीं देते हैं। प्रबंधन के स्तर पर धैर्य, नियमितता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस व्यवस्था के मुख्य स्तंभ है।
4: Au collège Alpha, nous faisons du rattrapage.
0: अल्फा कॉलेज की रेक्टर नाजिमा वालाइडो कहती है, अल्फा कॉलेज में हम रिमेडियल कक्षाएं चलाते हैं, चाहे एक्सटेंडेड स्ट्रीम हो या मेन स्ट्रीम। ये कदम छात्र में आत्मविश्वास लेकर आता है। अल्फा कॉलेज में हर छात्र अपनी गति से आगे बढ़ता है, एक साझा लक्ष्य के साथ प्रगति करना, सफलता प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना।
5: लॉन्ग माउंटेन स्थित गंगा यमुना सरस्वती धाम स्पिरिचुअल पार्क में पिछले शुक्रवार को एक दिव्य आध्यात्मिक संध्या का आयोजन किया गया। मॉरिशस सनातन धर्म कैंपस फेडरेशन के सहयोग से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के गुजरात राज्य से पधारे पूज्य साधु त्याग वत्सल दास जी ने अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से भक्तों को आध्यात्मिक संदेश दिया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक का रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। कुछ अन्य देशों की खबरें इस रिपोर्ट में तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
6: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के चलते मौतों की तादाद 204 तक पहुंची है। संदिग्ध मामलों का आंकड़ा 867 तक पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दूसरे 10 अफ्रीकी मुल्कों को खतरा है। युगांडा, रवांडा, केन्या और दक्षिण सूडान शामिल है। युगांडा में 3 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि की गई है। 1976 में कोंगो में पहली बार इबोला वायरस को पहचाना गया था। तब से लेकर आज तक 17 बार ये संक्रमण सक्रिय हुआ है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को और सख्त बनाया है। अब अर्जी भेजने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। अब जो विदेशी अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाना चाहते हैं और अमेरिका में ही रह रहे हैं, उन्हें अमेरिका के बाहर अर्जी भेजनी पड़ेगी। यानी विदेशियों को अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश में अमेरिकी दूतावास के जरिए अप्लाई करने की जरूरत होगी। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका की खुफिया सेवा ने एक व्यक्ति का कत्ल किया। उसने गोली चलाई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक भाषण दे रहे थे। रूस ने कीव पर हमला किया है। व्लादिमीर पुतिन ने रिटालिएशन कार्रवाई का वादा किया था, क्योंकि यूक्रेन ने पूर्व में जानलेवा हमले किए थे। 2 लोगों की मौत हुई है और दर्जन लोग घायल हुए हैं।
5: और अंत में मौसम का हाल।
0: मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो सोमवार 25 मई को सुबह 4 बजे तक लागू है। मैस्केरिन के दक्षिण में पाए जा रहे एक एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर और ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफी अच्छा रहेगा, सिवाय देर रात को बादल कुछ घिर आएंगे, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण

और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। कल सुबह भी कुछ इलाकों में बारिश होगी और कोहरा भी छाया रहेगा। कल शाम को ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है। बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और दक्षिणी समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों को दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा जनता से भी सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर होगा।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। अपवेल, गेंगुडुलेन अपवेल में 47 साल की 47 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अल्विना गेंगुडु पैदाइशी नाम आपादू और जिन्हें सब लोग अल्विना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह के साढ़े नौ बजे उनके पति श्री सुबी गेंगुडु के घर गेंगुडुलेन अपवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। कन्हाई लेन लाफ्लोरा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नेलौती सुरुजबाली महादेव जिन्हें सब लोग रीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके बेटे श्री उमेश महादेव के घर कन्हाई लेन लाफ्लोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। घों बाफों लालमाटी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हेवंती देवधारी पैदाइशी नाम जोगी और जिन्हें सब लोग पार्वती रानी ठाकुराइन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रकाश देवधारी के घर घों बाफों लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथ्रोबोन में 96 साल के 96 ईयर्स ओल्ड के श्री देवदत्त गोकुल जिन्हें सब लोग टोंगौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। लातापी रोड बोनाकोई में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्री सूरजानन घुमरिया जिन्हें सब लोग सुराज के नाम से भी जानते थे और जो नेशनल ऑडिट के एचओ मैनेजर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन की 11 बजे कल दिन

0: 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता घुमरिया के घर लातापी रोड बुनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लातापी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। श्वाजी बेजिकाप में 40 साल के 40 years old के श्री अजीव आगी जिन्हें सब लोग दावा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी मां श्रीमती सांता बाई इटू के घर श्वाजी बेजिकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें बेजिकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। Grand River South East, Camp de Pêcheur, Uttam Jagan Road, Grand River South East, Camp de Pêcheur, Uttam Jagan Road, मैं 56 साल के 56 years old के श्री मनोज फूरा जिन्हें सब लोग जीतन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के घर ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट कौदे पेशेय उत्तम जगन रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। रॉयल रोड एक्वायर में 67 साल के 67 years old के श्री दयादत्त राजवंती जिन्हें सब लोग रमेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के घर रॉयल रोड एक्वायर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। वन शक्ति माता स्ट्रीट पेचीबेलिया में 77 साल की 77 years old की श्रीमती देवंती देवलल पैदाइशी नाम पुरन और जिन्हें सब लोग माता जी देवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री बिसुनदयाल देवलल के घर वन शक्ति माता स्ट्रीट पेचीबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 years old के श्री बसंत तैयब जिन्हें सब लोग मोती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सत्यम तैयब के घर रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैंट हिल यूके में नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स गैट्स हिल यूके में 57 साल के 57 years old के श्री राजीव कुमार गोपल जिन्हें सब लोग राजीव के नाम से भी जानते थे और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई सपहर के 3:30 बजे यूके समयानुसार उन्हीं के घर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क यूके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेनसडे ऑन 27 मई एट 3:30 PM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: À l'occasion lancement NBC Play, préparez-vous pour décoller. NBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'ascense des grands gagnants pour un pot des tickets de chacun pour un hélicoptère joyride exceptionnel dans région 6-10, l'île Maurice. Pour participer, download l'application NBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio NBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte NBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse, au bout

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: संध्या के समय इन सभी इन देवों को नमन करते हुए आपका स्वागत करते हैं इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटक।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: जड़ों से भी उखड़ कर लोग जीते हैं, ये जिंदगी है, उजल कर भी लोग जीते हैं। कोई भी गम बहुत देर तक नहीं रहता, मोहब्बत में भी लोग जीते हैं। थैंक यू फॉर एंजॉइंग दिस म्यूजिकल सफर।

शाम के 4 बजे से लेकर अभी तक आपका साथ बना रहा, आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि ये सफ़र जितना मेरे लिए खुशगवार रहा आपने भी उतना ही पसंद किया होगा। And now I'm going to leave you in the safe hands of हमारे दोस्त निखिल, इस उम्मीद के साथ कि

अगले वीकेंड हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी. इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरेबल वीकेंड, अ वेरी स्पेशल वीकेंड. एक तो कॉन्सर्ट होगा जुबिन का और फिर संडे को मातृदिवस. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड. बाय बाय.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: गुड इवनिंग मॉरिशस और वेलकम है आप सबका बॉलीवुड सिज़ला में। मैं हूं निखिल और अगले दो घंटे हम हर संडे की तरह हम सफर बनने आया हूं आपके शाम से लेकर रात का सफर का। बाहर हवा थोड़ी

दर्द है अंदर थोड़ा मंडे का प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना तो आपको क्या करना है बस रिलैक्स करना है डिम लाइट्स करना है हेडफोन्स लगाए हैं तो हेडफोन्स को थोड़ा और बढ़ा देना है लॉन्ग ड्राइव पर निकले हों या फिर लेट नाइट शिफ्ट पर हों जहां पर भी हो ये शो आपके साथ है इस संडे को थोड़ा और म्यूजिकल बनाते हुए दिस इज बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन रेडियो मस्ती

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कल मंडे है लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी बस गाने हैं, रात है और थोड़ा सा वक्त अपने लिए।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: बॉलीवुड सिज़लर सिर्फ मेरा शो नहीं है यारों, ये हम सबकी संडे नाइट कन्वर्सेशन है। तो आपके मैसेज जरूर भेजिए, डेडिकेशंस, कन्फेशंस या फिर बस एक हेलो भी चलेगा। 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर फॉर टुनाइट। अगर आपको हमें कुछ भी कहना हो तो आप बताइए, हम यही हैं।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, हमारा SMS और WhatsApp inbox काफी active हो चुके हैं। हमने जैसे ही आपके पैगाम मांगे, आपने भेजने शुरू कर दिए। क्या बात। तो चलिए थोड़ा म्यूजिक को पॉज करते हैं और सुनते हैं आप लोगों की कहानियां, जिसके हर एक मैसेज के पीछे एक मूड छुपा होता है। वो मूड हमको पढ़ना है। पहला मैसेज, दिस वॉज asking for a ghazal. Unfortunately, ये ग़ज़ल ना मुझको पता है ना मुझको लगता है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो पाएगा नंदिनी जी, लेकिन आपके लिए हम पेश करेंगे कुछ और जो आपको बेहद पसंद आएगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। ये अगला मैसेज काफ़ी लंबा मैसेज, थैंक यू वेरी मच सुया जी। नमस्ते निखिल जी, हाउ आर यू, वेलकम बैक इन माई किचन रेडियो। जी हाँ, आप क्या बना रही हो आप हमको बताना। नो गोची नो कैरी ओनली अलीम टुडे। क्या बात। संडे, सो यू आस्किंग फॉर अ सॉन्ग फॉर आपके पति देव लाल देव, बेटा विकी, बहू कीर्ति, बेटी श्वेता, दामाद रोशन हुकुम, एंड योर फोर लिटिल चिल्ड्रन रिधि, सोनाक्षी, अवनी एंड क्यूट वंश, फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कोंगोमा। ठीक है, हम करेंगे उनके नाम और खासकर आपके नाम सुया जी ये अगला गाना। And we've got one very, very, very, very special message. Hello, please play a nice song for the night shift staff at SSRN Hospital of Ward 22 and all the staff working night shift. जी हाँ, उनको कहेंगे bon courage, may you be brave, क्योंकि आपके काम करने से हम relax कर पाते हैं। So आपको कहेंगे thank you very much और अगला गाना खास आपके नाम। और काफ़ी सारे बर्थडेज भी हैं आज। ये पहला बर्थडे मैसेज, हैप्पी बर्थडे टू निधि, ये मैसेज का स्टार्ट है। बेस्ट विशेज फ्रॉम फियांसी गर्विश, मम सुनीता, ब्रो नक्ष, नेहा, अखिलेश, लिटिल नीज वेदाक्षी, फ्रॉम ऑल हम्बवन फैमिली ऑफ वाकवा। साथ ही साथ हमारा नाम भी जोड़ दीजिए। वी विश फ्रॉम द होल RM2 टीम, वी विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू निधि जी। साथ ही साथ भाई नयाज का भी जन्मदिन है, और भाई नयाज के जन्मदिन मुश के साथ एक फरमाइश भी आई है, मैं जहाँ रहूँ। जी हाँ, वो अगर चला दूँगा ना तो मूड थोड़ा मर जाएगा, लेकिन इसी फिल्म का एक गाना, एक बहुत ही लोकप्रिय गाना हम करेंगे आप सभी के नाम। हुआ सेलिब्रेटिंग योर बर्थडेज, निधि, नयाज, कुछ भी हो आपका नाम, आपका दिन है आज, तो ये गाना आपके नाम। दिलरुबा

ये अगला गाना taken from movie Sayara हम करेंगे Appa Do Family of Voshnoa के नाम दागन श्वेता रवेश प्रिशा एंड लविशा for from the Appa Do Family of Voshnoa साथ ही साथ हम करेंगे ये लवली गाना टू भावना और उनकी भाभी शालिनी भाई विशाल स्वानिश शयान पापा नारद और खासकर बहन तुलसी के लिए In-

0: 1 बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।
1: जी हाँ, आपने अभी अभी अपना रेडियो चलाया है तो आपको बता दें दैट यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, चल रहा है बॉलीवुड सिज़ला। और ये मैसेज है स्पेशली जो लोग इस वक्त रोड्स पर हैं, कैब ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर्स, या बस लॉन्ग ड्राइव पर निकले हो दिमाग हल्का करने के लिए, तो कहेंगे आपको प्लीज़ सेफ ड्राइव करिएगा। लेट नाइट रोड्स कभी कभी डिसेप्टिव हो जाती हैं, खाली लगती हैं तो स्पीड अपने आप ही बढ़ जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपका इंतजार कोई घर पर भी कर रहा है। इसीलिए आपको कहेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड हो वो चलेगा, लेकिन स्पीड को थोड़ा सा लो रखिएगा और रिस्पेक्ट द रोड एस्पेशली।

0: जी हाँ, ये गाना खासकर उनके लिए जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, आपको बस याद दिला दें, म्यूजिक का मजा लीजिए लेकिन आंखें रोड पर और दिमाग शांत रखिए। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेफली घर पहुंचना है, खैरियत से।
1: बॉलीवुड सीज़ला
2: RM2, योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, खैरियत पूछो इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह एंड फ्रॉम द एल्बम छिछोरे. ये एल्बम काफ़ी टॉक में था. इट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन विद द डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. और उसी को लेकर, उसी इंसिडेंट को लेकर मुझको आपसे कुछ कहना है. देखो, दुनिया में नफरतें जो हैं वो सस्ते में मिल जाती हैं. सस्ते में क्या, वो तो फ्री में मिल जाती हैं. नेगेटिविटी इज फ्री, लेकिन प्यार को कॉन्शियसली देना पड़ता है. प्यार महंगा होता है. आज किसी को अप्रिशिएट कर दीजिए, या फिर किसी की मदद कर दीजिए, या फिर बस अपने दिल में किसी को माफ कर दीजिए, आपको अंदर से थोड़ा अच्छा लगेगा.

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, वेलकम बैक टू बॉलीवुड सिज़लर ओनली ऑन रेडियो मस्ती RM2। हम शुरू करें हमारा सेकेंड आवर। अब रात थोड़ी गहरी हो गई है, जी हाँ, हमारी गुफ्तगू थोड़ी और में थोड़ी और सच्चाई भर चुकी है, कन्वर्सेशन थोड़ा ऑनेस्ट होने वाले हैं। शायद कुछ लोग अभी घर पहुंच रहे हैं, कुछ कल के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग बस ये नहीं चाहते कि ये वीकेंड, ये संडे ख़त्म हो। तो नेक्स्ट वन आवर क्या करेंगे कि विल स्लो लाइफ डाउन अ लिटिल बिट मोर। और याद रहे, अगर आपके पास कोई भी मैसेज, डेडिकेशन या दिल की कोई भी बात हो, सेंड इट अक्रॉस 5499-1294 इज द मैजिकल नंबर। हो सकता है कि आपकी बात किसी और को एग्जैक्टली वही फील करा दे जो उससे सुनना था। अगर आपका मूड सही है तो आप हमको मैसेज भेजिए, अगर आपका मूड सही नहीं है तो ये अगला गाना खास आपके नाम।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: वैसे तो ये डिजिटल एज है, कुछ गाने पेन ड्राइव पर रहते हैं, कुछ गाने हार्ड डिस्क पर रहते हैं, लेकिन ये जो गाने रहते हैं ना, सीधा हमारी याद से लेकर हमारे दिल तक जाते हैं। जी हाँ, फ्रॉम द ट्रेन, बीते लम्हे, इन द वॉइस ऑफ KK।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कभी नोटिस किया है कि रात में इंसान ज्यादा चुप हो जाता है, ज्यादा सच बोलने लगता है. नोटिस किया है, दिन में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लोग होते हैं, शोर होता है, काम होते हैं, लेकिन संडे नाइट स्पेशली इस वक्त विचार जो ख्याल हैं वो थोड़ा क्लियरली सुनाई देते हैं. तो अगर आप भी ओवरथिंकिंग के मारे हो जैसे कि मैं हूँ और लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ये पकड़ें या वहाँ जाएं या ये करें, तो बस रिलैक्स भाई. हर इंसान क्वाइटली कुछ ना कुछ फाइट कर रहा होता है. आपकी फाइट ऐसे स्पेशल भी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है कि हमारे साथ बस गाना सुनते रहना है, इमोशंस पर चलते रहना है और कभी हाथ नीचे नहीं करना है. ठीक है जी, हाँ, हम देंगे आपका साथ टिल 9 PM. उसके बाद भी रेडियो मस्ती तो है ही, इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे तराने, और फिर ऊपर से आपके मैसेजेस आ जाएं तो लोनलीनेस क्या ही कर लेगा भाई. जैसे कि ये अगला मैसेज, ये अगला गाना हमको डेडिकेशन मिला है, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम रोशनी जी फ्रॉम

Auburn, a very regular listener of ours, जो जिनके पास जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, जिनसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, वो कमाल के ही होते हैं. This one is from the movie Rockstar.

0: Hollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: देखो म्यूजिक एक तरफ होता है लेकिन लिसनर्स की स्टोरीज जो हैं वो अलग ही दुनिया की होती है और मुझे लगता है कि रेडियो का जो असली जादू होता है जो असली मैजिक होता है रेडियो में स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को बिना देखे समझ लेते हैं जैसे कि आप हमें समझ रहे हो हम आपके मैसेज के द्वारा आपको समझ रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और आपके मैसेजेस देख लेते हैं देखते हैं कि मॉरिशस की संडे नाइट इस वक्त क्या फील कर रही है द फर्स्ट मैसेज हेलो जी नमस्ते निखिल जी आई एम टीना फ्रॉम शामुनी प्लीज प्लीज इफ यू कैन प्ले द सॉन्ग परदेसिया रिमिक्स अभी ये गाने जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि कौन सा वाला परदेसिया परदेसिया ये वाला कि परदेसिया ये सच मेरे को पता नहीं तो यू विल हैव टू गिव मोर डिटेल्स टीना जी लेकिन आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके आपका जो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका डिटेल मिले तब तक हम आपके लिए ये अगला गाना चलवा देंगे ये अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे टू रीना पलवान एज वेल फ्रॉम हर बेस्टीज रितिशा मनीषा लतिका एंड उष्णा गॉड ब्लेस हर एंड थैंक्स अ लॉट थैंक यू अ लॉट जिन्होंने मैसेज भेजा है एंड आई एम श्योर रीना जी मस्ट बी वेरी वेरी वेरी लकी टू हैव सच फ्रेंड्स निधि जी के लिए द बर्थडे गर्ल निधि पता है याद है ठीक है तो उनके लिए बर्थडे मैसेज आया है फिर से हैप्पी बर्थडे टू निधि बेस्ट विशेस फ्रॉम मामू राम मामी दीमा और कजिन नील आई होप कि आप इनका बर्थडे बहुत बहुत बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं और साथ ही साथ हमको मैसेज मिला है फ्रॉम कशिश भाई ने हमको कहा है कि ही इज़ मीटिंग विद कजिन्स विद ब्रदर्स कुमार वशिष एंड निखिल उन्होंने मांग की है एक काफ़ी पुराने गाने की फ्रॉम द मूवी खामोशी ये दिल सुन रहा है और हम भी आपसे कहेंगे कि हमारा दिल हमारे कान भी सुन रहे हैं आपके मैसेज के लिए तरस रहे हैं आप भी अपना पैगाम भेजो 54991294 54991294 मैं यहीं पर रहूँगा टिल 9 PM तो ज़्यादा वक्त नहीं है कुछ बताना हो तो बता दीजिए तब तक आप कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये दिल सुन रहा है सुने

0: Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: मुझे क्या लगता है कि म्यूजिक का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता, कभी कभी वो याद को प्रिजर्व करना भी होता है। जैसे कि एक गाने के साथ एक वाकया जुड़ जाता है, या फिर एक टेस्ट, या फिर एक खुशबू, या फिर एक इंसान कभी कभी उस इंसान को सर्वाइव करवा देता है, उसकी याद को फिर से ताज़ा करवा देता है, और कभी वो एक इमोशन को नाम दे देता है जो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए कुछ गाने पुराने नहीं होते, बस हमारे साथ एज करते जाते हैं। हम दिल से जितना जवान फील करते हैं ना, वो गाना उतना ही रीसेंट लगने लगता है। जैसे ये अगला गाना, एंड दिस वन इज स्पेशली स्पेशली स्पेशली फॉर विनय जी, जिनके लिए हमको मैसेज मिला है फ्रॉम प्लेस ऑफ स्मॉल। आपका नाम नहीं मिला है, जिनको जिन जिन जिन लोगों ने हमको मैसेज भेजा है, आपको बोलूँगा कि अगर 5499-1294 पर मैसेज भेजना है, देन मे बी ट्राई फॉर व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट होता नहीं है। जैसे कि ये मैसेज, इस मैसेज में उनका नाम कट गया है, लेकिन भावनाओं को हम समझ रहे हैं। बहन, हाय, नमस्ते भाई, आई इन प्लेस ऑन स्मॉल विद हबी विनय, लिसनिंग टू योर लवली वॉइस, प्लीज प्ले खूबसूरत फ्रॉम स्ट्रीटू फ्रॉम फॉर माय हबी विनय एंड माय। यहाँ पर मैसेज कट गया, लेकिन आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं दीदी। आपके लिए खासकर हम चलाएंगे खूबसूरत फ्रॉम द मूवी स्ट्रीटू, और ये गाना हम करेंगे खासकर उन सभी के नाम जो अभी हमारे हमको सुनने के साथ साथ अभी प्यार में पड़े हैं या फिर लेटे हैं।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: तो बस दोस्तों, यहीं तक था हमारा आज का सफ़र. संडे नाइट का ये जो अजीब सा मैजिक होता है ना, थोड़ा सा हीलिंग, थोड़ा सा पिछले हफ्ते से भारी और आने वाले हफ्ते से थोड़ा सा कम भारी. और अगर आज के गाने, आज की बातें या कोई भी एक भी लाइन अगर आपके दिल तक पहुंची हो, देन द नाइट वाज वर्थ इट. जो लोग काम कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, उनको कहेंगे कुआश. जो ड्राइव कर रहे हैं, आपका घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, ठीक है. और जो किसी चीज़ से क्वाइटली जंग लड़ रहे हैं, बस उनसे कहूँगा कि प्लीज़ डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ. ये जंग खुद से नहीं, खुद के लिए है. बस आप दिमाग पर ये डाल दो, सब ठीक हो जाएगा. कर फिर दुनिया फास्ट हो जाएगी. आज आपके पास सांस लेने के लिए बस आज की रात है. मैं हूं निखिल, थैंकिंग यू फॉर स्पेंडिंग योर संडे नाइट विद मी ऑन बॉलीवुड सिज़ला ऑन रेडियो मस्ती. गुड नाइट मॉरिशस. और आपसे कहूंगा कि जहां भी जाए, प्यार के जो सीड्स हैं वो बोते जाएं.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, और हम बिल्कुल तैयार हैं इस कार्यक्रम के साथ। जानते हैं कि आप चाहे कहीं भी हो, बस आपको बताएं कि ये वक्त है म्यूजिक के साथ जुड़ने का। लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, जहां पर रात की ठंडी हवाओं में एक अलग सी बात है, दिन का शोर थम जाता है और दिल की आवाज साफ सुनाई देती है। तो चलिए अपनी धड़कन को धड़कन के साथ मिलाइए और शामिल हो जाइए इस कार्यक्रम में। कंटिन्यू टिल मिडनाइट।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.
2: वक्त हो गया कि आज रात खुद से एक वादा करें, जो बीत गया उसे दिल से आधा करें। नई सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी, हर मुश्किल एक दिन मुस्कुरा कर चली जाएगी। हाँ, सबक जरूर सिखाएगी, बस भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला होना तो तय है।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: रात की खामोशी और ये म्यूजिक जिंदगी में शामिल होता हुआ. वैसे कभी कभी चुप रहना भी सुकून देता है. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता. जो लोग दिल को समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती. तो इस रात थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताइए और दिल को भी थोड़ा सा आराम दीजिए इन गानों के साथ.

0: दोस्तों जिंदगी की रेस में इतना मत भागे कि अपने ही पीछे छूट जाएं। कभी चाय लेकर बैठिए, पुरानी यादों को याद कीजिए और अपने आप को मुस्कुराने का मौका दीजिए, क्योंकि असली खुशी महंगी चीजों में नहीं होती, सुकून भरे लम्हों में कितनी आसानी से मिल जाती है।
1: You're listening to RM2, a radio musty.
2: Hey, listen to me, baby. Se ooh la la la.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: सोचे तो ये रात हमें ये सिखाती है कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। चांद भी रोज घटता है, बढ़ता है, फिर भी अपनी रोशनी नहीं खोता। तो मुश्किलों से भी हम घबराए क्यों? क्यों ना यूं ही चमकते रहें? आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: दिल अगर उदास हो तो किसी अपने की आवाज सुन लीजिए। अगर आप किसी के पास नहीं जा सकते तो उसको सोच कर ही क्यों ना दिल को हल्का कर लें, पुराने गाने गुनगुना लें। अरे संगीत साहब वो दोस्त है जो हर मूड में हर वक्त साथ निभाता है, हमेशा उसी तरह।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: बस मेरे लिए।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
2: कुछ लोग जिंदगी में बारिश की तरह आते हैं। हाँ, जैसे आजकल थोड़ी सी बारिश हो जाती है एकदम से, कभी सोचा नहीं समझा नहीं, बस एक पानी की बूंद और फिर लगता है कि अरे मौसम में ऐसा बदलाव। बस लोगों की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जिंदगी में बारिश की तरह आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और याद बन जाते हैं। उनकी बातें दिल में खुशबू छोड़ जाती है और मुस्कान चेहरे पर टिक जाती है। तो अपनों की कद्र कीजिए, क्योंकि रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं।

को थोड़ा दूर रखिए और अपने सपनों से बात कीजिए। देखिए, सोचिए, सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो सपनों को दिल से जीते हैं।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news.

0: And the greatest mix of music.
1: Late Night Grooves RM2 पर और किस्मत कनेक्शन कहें या म्यूजिकल कनेक्शन. अच्छा किस्मत की बात चली है तो किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं. हार कर बैठ जाना आसान होता है लेकिन मुस्कुराकर उठ जाना, अपने आप को समेटना संभालना असली हिम्मत है. तो दोस्तों कोशिश करते रहो क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती.

रात का ये मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई और धीमे धीमे ये गाने आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हुए दिल को पुराने दिनों में ले जाते हैं ना, जहाँ छोटी छोटी खुशियां हमारे लिए जैसे एक त्योहार था। हर दोस्ती दिल से होती थी, तो जिंदगी को भी सिंपल रखिए, क्योंकि सुकून सिंपलिसिटी में तो मिलता है।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.
3: कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदगी अपने आप सिखा देती है, कभी लोगों से, कभी हालात से, और कभी अकेली रात से। इसे हर दिन कुछ नया सीखे, यही जिंदगी का असली सफर है।
0: RM2
1: Radio Musti feels a Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: जो लोग हमेशा हंसते हैं ना, उनके दिल में भी बहुत सारी कहानियां होती हैं, लेकिन वो दर्द को मुस्कान बना लेते हैं। अरे साहब, यही तो है असली कला जीने की। तो दिल हल्का रखिए और हर पल को दिल खोल कर जी लीजिए।

आसमान में जो सितारे हैं टिमटिमा रहे हैं, एक बार फिर से ऐसा लगता है जैसे खिड़की के पास आ गए हैं। शायद कोई पुरानी याद साथ लेकर आए हैं। कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं, जो शब्दों में नहीं उतार पाते उनको हम याद बना लेते हैं। तो चलिए साहब, उन यादों को मुस्कुराकर जी लेते हैं, क्योंकि वही जिंदगी की खूबसूरत कहानी है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट

जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो अपने आप को किसी से तुलना में मत डालो, कंपेयर मत करो। हर इंसान की कहानी अलग होती है और हर किसी का सफ़र भी अलग, तो हर सफ़र का अपना मज़ा लीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए और यही हैप्पीनेस की पहली सीढ़ी है। अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, लेकिन रुकना मना है, इसलिए चलते रहिए।

Right, ladies and gentlemen, जाने का वक्त आरम टू पर इतने प्यार से आपने साथ दिया हमारा, जहां 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, अब करते करते मिडनाइट के करीब पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इतने प्यार से हमारा साथ दिया 3 घंटे का ये सफर, और हमें मिला ये अवसर कि आपके साथ म्यूजिकल कनेक्शन एक बार फिर से स्थापित कर लें। चलिए एक बार फिर से जल्दी मुलाकात होगी एक और सफर में कहीं किसी और दिन, लेकिन म्यूजिक आपके लिए हमेशा RM2 पर 24/7 साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: अच्छा लगा हाँ
1: रहते हो
0: सच

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

Hour M2. Radio Musty. In the mix. Radio.